जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो फागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज से कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे डेम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है गांव विस्तार माते पशुधन स्वास्थ्य ने टीकाकरण नी हूँ आवश्यकता है आनु हूँ उद्देश्य है ने आ तक की हूँ लाभ थे सके। तो भाई बोनो अण विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कानी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रहसू आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બેન બુનું ગીતનો એશો પૂરું નણ ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સપનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હ અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ભાઈ બોનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હું ગાંવ વિસ્તાર માટે પશુધન સ્વાસ્થ્ય એ ટીકાકરણની હું આવશ્યકતા હે અણા વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મનીષજી તો સબ થકી પહેલા આપણે હમરી લણાની વાત મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્તે અંજલિ જી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ કે ગાંવ સ્તર પર પશુધન સ્વાસ્થ્ય ઓર ટીકાકરણ કી આવશ્યકતા ક્યું હૈ ઓર ઇસકા ક્યા મહત્વ હૈ
1: જી બિલકુલ અગર હમ હમારે ક્ષેત્ર કી બાત કરે જો આદિવાસી બહુલ ક્ષેત્ર હૈ યહાં પે જો કૃષિ પરંપરાએ હૈ ઉનમે પશુધન ઇસકી રીઢ માની જાતી હૈ
0: બિલકુલ
1: ઓર પશુપાલન સિર્ફ कृषि के लिए आवश्यक नहीं है पशुधन का पालन कई आर्थिक प्रणालियों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
0: बिल्कुल
1: वे दूध मांस अंडे और श्रम जैसी कई सेवाएं हमें देते हैं ग्रामीण परिवारों की आजीविका में इसीलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है
0: बिल्कुल
1: अब अगर हम बात करें कि उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण की तो पशुधन कई बीमारियों के प्रति बहुत जो है संवेदनशील होते हैं और ये बीमारियां या ये उनके स्वास्थ्य पे पड़ने वाले प्रभाव उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उत्पादकता और उनके विकास को प्रभावित करते हैं
0: जी जी।
1: जिसके दीर्घकालिक परिणाम कभी कभी बहुत ही खराब होते हैं तो पशु चिकित्सा सेवा और टीकों तक जो पहुंच अभी कम है हमारे पशुपालकों की इसी के कारण इनके स्वास्थ्य पे पड़ने वाले विपरीत प्रभाव जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं
0: बिल्कुल
1: इसका सीधा सीधा एक परिणाम पशुपालक को भी होता है कि उनका दो तरफा आर्थिक नुकसान होता है
0: बिल्कुल
1: एक पशुधन का उत्पादन क्षमता कम होना और दूसरा उनकी जेब पर पड़ता है
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ज्यादा बीमार होने पे उनको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं तो इस दोहरे नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि ग्राम स्तर पे हम स्वास्थ्य और टीकाकरण को जो है बहुत स्वास्थ्य जांच और उसका निदान और इसी के साथ में जो है टीकाकरण इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इसकी आवश्यकता से हम इनकार नहीं कर सकते
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से गाँव स्तर पर स्वास्थ्य और टीकाकरण की जो आवश्यकता है उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए यही सर इसके फायदे क्या होंगे यानी कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा हमारे लिए
1: जी बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें कि ग्राम स्तर पे यदि पशुधन स्वास्थ्य और टीकाकरण नियमित होने लगे तो सबसे पहला तो है कि हमारे पशुधन के स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा
0: बिल्कुल
1: यानी कि स्वास्थ्य जांच जो कि वैसे भी सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती है तो हमारे पशुधन की नियमित स्वास्थ्य जांच हो समय समय पर पशुधन को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां हैं उनको रोका जा सकता है
0: जी हाँ।
1: और उनके उपाय अपनाए जा सकते हैं इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे पशुधन के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा और उत्पादकता लगातार बढ़ती जाएगी अब अगर हम टीकाकरण की बात करें तो आमतौर पर गंभीर बीमारियों के खिलाफ व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित करने से हमारे पशुधन में आने वाली कुछ बड़ी बीमारियों को जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं
0: जी हाँ।
1: या फिर उनको होने से या आने से पूरी तरह से हम

0: दवाओं का भी जो है उपयोग करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: इसी के साथ साथ हमें हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, इनको ये जानकारी भी देना आवश्यक है कि कब कौन से समय कौन सा टीकाकरण करवाना है, या किस तरह से जो है पशुधन के लक्षणों को देख के वो ये अनुमान लगा सके कि ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं है। अगर वो लक्षणों को देखना पहचानना सीख जाएंगे तो होने वाले बड़ी बीमारियों को जो है आसानी से रोका जा सकता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि हमें हमारे किसानों को भी जो है सशक्त बनाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो रोग एक तरह का बोझ होता है, चाहे वो किसी को भी हो।
1: बिल्कुल।
0: सामान्य रूप से हमको भी सामान्य सिर दर्द होता है तो हमारे मन में ये भावना आती है कि हे प्रभु, ये सिर दर्द क्यों है, ये नहीं होता तो मैं कुछ बेहतर कर लेता, मैं काम निपटा लेता। तो इसी तरह से जब हमारे पशुधन पे भी कोई रोग या बीमारी आती है तो वो उस पे बोझ हो जाता है।
1: जी
0: है। तो इसका एक कारण ये भी है कि पशु चिकित्सा सेवाओं तक जो है हमारी यानी कि पशुपालकों की पहुंच जो है सीमित है, और इसी के कारण बीमारियों का बोझ उन्हें झेलना पड़ता है। जैसे यदि अभी आने वाले समय में भी हम बात करें तो इस समय क्योंकि अब बारिश का समय नजदीक है और ये समय है खुरपका मुंहपका यानी कि FMD का टीका लगवाने का, तो इसके कारण जो हमारे पशुधन को तकलीफ होती है वो खड़े होने में भी तकलीफ होती है क्योंकि उनके खुर जो है पक जाते हैं, उनमें से मवाद आने लगता है और वो पांव को टिका नहीं पाते। इसी के साथ साथ इसके जो विषाणु हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके मुंह में भी घाव और सूजन बना देते हैं जिससे वो खा नहीं पाते। तो इतनी घातक बीमारी को होने से रोकने का बहुत आसान उपाय है कि बस अब हम हमारे पशुधन के टीकाकरण में जो है FMD का टीका जरूर लगवाएं। हमारे जो भी मादा पशुधन हैं उनमें ब्रुसेलोसिस और बोवाइन के टीके भी जो है हमको लगवाना चाहिए, तो ये इनको तपेदिक जैसी बीमारियों से भी जो है बचाते हैं। और सभी तरह से यदि बोला जाए तो क्योंकि पशु चिकित्सा सेवाएं बहुत न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हैं या लगभग मुफ्त हैं, तो इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा के हम हमारे पशुधन के रोग बोझ को कम कर सकते हैं और हमारे पशुपालकों के आर्थिक बोझ को भी कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य जांच जो ग्राम स्तर पर होती है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है और उसके क्या फायदे होते हैं। यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए क्या क्या गतिविधियां की जाती हैं और उसके क्या अपेक्षित परिणाम हमें मिल पाएंगे।
0: तो यदि हम स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के लिए गतिविधियों की बात करें तो पहला तो होगा कि हम स्वास्थ्य जांच और निदान के लिए जो है उन समस्याओं की पहचान करें जिसके लिए हमारे पशुधन का जो है स्वास्थ्य जांच और निदान करवाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम जो पहचानी गई स्थितियां हैं उसके अनुसार भी बाकी हमारे जो गांव के किसान हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं कि क्या उनके पशुधन में भी इस तरह की स्थितियां चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से देखी जा रही है या उनको ऐसा लग रहा है क्या। तो इसी के साथ में जो है टीकाकरण अभियान के रूप में हम जो है इसको ले सकते हैं ग्राम स्तरों पे।
1: बिल्कुल।
0: तो जो भी प्रचलित बीमारियां हैं जिनके खिलाफ टीके जिस समय पे लगाए जाते हैं, तो एक तो किसानों को जो है अपने स्तर पे उसका रिकॉर्ड रखने की थोड़ी सी आदत रखना होगी ताकि उन्हें ये पता रहे कि ये वाला टीका लग चुका है और ये वाला टीका बाकी है, क्योंकि कुछ टीके ऐसे हैं जिनको साल में 2 से 3 बार तक लगवाना पड़ता है, यानी कि उनका बूस्टर डोज दिया जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा वो उसके लिए या तो कहीं पे लिख के रख लें कि ये टीका लग चुका है और अब कितने समय के बाद वापिस इसको लगवाना है। तो यदि ग्राम स्तर पे सारे पशुपालक मिल के इस तरह के आयोजन करते हैं कि वो या तो एक जगह पे अपने पशुधन को इकट्ठा कर लें और जो पशु स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सूचित करें कि हम इस दिन अपने सारे

0: धन को इकट्ठा करेंगे, तो वहां पे आप आके उनका स्वास्थ्य जांच कर लीजिए, उसके जो निदान हो सकते हैं वो कर दीजिए, और इसी के साथ में उस समय पे होने वाले टीकाकरण के लिए भी जो है हम हमारे पशुओं को इकट्ठा करेंगे, तो आप टीका भी लेके आइए। क्योंकि टीकाकरण भारत सरकार ने भी जो है अनिवार्य रूप से एक बड़े अभियान के रूप में लिया है, तो हमारे पशुपालकों को भी जो है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कुछ स्तरों पे हो सकता है कि हमें किसानों के लिए कार्यशालाएं करना हो, हम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इसमें मदद कर सकती हैं, इसी के साथ साथ में पशु स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो स्वयंसेवी संस्था उनके सहयोग से इसको मिलके कर सकते हैं, कार्यशालाओं का आयोजन जिसमें हमारे पशुधन के स्वास्थ्य प्रबंधन को लेके बात हो, बीमारियों की रोकथाम को लेके बात हो, उनके उचित खान पान और समय समय पे क्या दिया जाना चाहिए, उनके पोषण में क्या चीजें होना चाहिए, पशुशालाओं में स्वच्छता प्रबंधन किस तरह से हो, इसके लिए जो है एक समय में या अलग अलग समय में हम छोटे छोटे अंतराल पे छोटे समय के लिए थोड़े समय के लिए उनके उपलब्ध समय के अनुसार जो है उन कार्यशालाओं का आयोजन यदि लगातार करते हैं तो इससे किसानों को जो है ये पता रहेगा कि उनको कब किस तरह से क्या अपने पशुधन के स्वास्थ्य और हित में निर्णय लेना है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से गांव स्तर पर पशु स्वास्थ्य और टीकाकरण की आवश्यकता को हमें बढ़ावा देना चाहिए और क्या क्या गतिविधि करनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को हमें बताया है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तो मवेशियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उच्च टीकाकरण की दरें हैं वो बढ़ जाएंगी, इसी के साथ किसानों का ज्ञान भी बढ़ेगा और मजबूत पशु चिकित्सा सेवाएं भी पशुओं को मिल पाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ढेर सारे फायदे होंगे अगर गांव स्तर पर हम इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं और समय पर पशुधन के स्वास्थ्य और खान पान की चीजों को महत्व देते हैं। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ભાઈ બોનો, જેમ કે હવે આપણે વેસમી મનીષજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણા કાની વાતે બતાડી હે કે ગ્રામ સ્તર માટે હરતે આપણને ટીકાકરણને વધાવવાલવું હોગા ને એન થકી હું હું ફાયદા થઈ શકે। તો આશા કરા હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા, પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को जिम्मेदार बनाना कब और कैसे शुरू करें। हम देखते हैं कशिश के हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर आत्मनिर्भर, समझदार और सफल इंसान बने।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ऐसे गुण अचानक नहीं आते, इसके बीच बचपन में ही बोए जाते हैं। जिम्मेदारी भी एक ऐसा ही गुण है जो बच्चों को धीरे धीरे सिखाया और विकसित किया जाता है। अक्सर हम बच्चों को बहुत छोटा समझकर उनके सभी काम खुद कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसा हमेशा करना श्रोता साथियों सही होता है? क्या बच्चों को शुरू से ही कुछ जिम्मेदारियां देना जरूरी है? तो आज इस विषय पर कशिश हमारी श्रोता साथियों से विस्तार से ढेर सारी बातें रहेंगी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जाना कि किस तरीके से बच्चों को जिम्मेदारी सिखाना जरूरी होता है, उसकी सही उम्र क्या है, और साथ ही छोटी छोटी जिम्मेदारियों से शुरुआत हम कैसे करें।
1: बिल्कुल,
0: घर के कामों में बच्चों की भागीदारी कैसे होनी चाहिए, बच्चों को निर्णय लेने के अवसर हमें कैसे देने हैं, यही बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि जिम्मेदारी सिखाने में माता पिता की क्या भूमिका है। तो श्रोता साथियों, बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। यदि माता पिता स्वयं जिम्मेदार व्यवहार करेंगे, समय का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। माता पिता को केवल आदेश देने के बजाय बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चे किसी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हैं कशिश, तो उनकी सराहना करनी चाहिए, और यदि वे गलती करें तो उन्हें डांटने या अपमानित करने के बजाय समझाना चाहिए।
1: जी जी,
0: मार्गदर्शन और धैर्य बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने में सबसे अधिक मदद करता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि कई बार अंजलि जी माता पिता बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण उनके सारे काम स्वयं करने लगते हैं, जिससे वे ये सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी,
1: लेकिन श्रोता साथियों, जब बच्चों को हर काम तैयार मिलता है तो वे आत्मनिर्भर बनना नहीं सीख पाते। ऐसे बच्चे आगे चलकर छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में दोस्तों ज्यादा संरक्षण बच्चों के आत्मविश्वास और जिम्मेदारी दोनों को प्रभावित कर सकता है।
0: जी हाँ बिल्कुल कशिश, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि जिम्मेदारी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चे समय पर अपना काम पूरा करते हैं, अपनी चीजों की देखभाल करते हैं और अपने वादों को निभाते हैं, तो उनमें अनुशासन विकसित होता है। अनुशासन बच्चों को जीवन में नियमितता और संतुलन सिखाता है।
1: जी हाँ,
0: यही आदतें आगे चलकर उनकी सफलता की मजबूत नींव बनती है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि जिम्मेदार बच्चे अपने काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं, वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखने का प्रयास करते हैं, वे दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने व्यवहार के प्रति सजग भी रहते हैं।
1: जी
0: ऐसे
1: हाँ,
0: बच्चे भरोसेमंद होते हैं और अपने परिवार, विद्यालय और समाज में सकारात्मक भूमिका निभा पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज के हमारे बच्चे ही कल का समाज है। यदि श्रोता साथियों बच्चों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी, तो वे बड़े होकर अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम जैसा कि जानते हैं अंजलि जी कि जिम्मेदार बच्चे अच्छे नेता, जागरूक नागरिक और संवेदनशील इंसान बनते हैं। साथियों, वे केवल अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं।
0: जी जी,
1: इस प्रकार जिम्मेदार बच्चों का निर्माण एक मजबूत और बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से कि जिम्मेदारी कोई ऐसा पाठ नहीं है जिसे एक दिन में सिखाया जा सके।
1: बिल्कुल,
0: यह एक सतत प्रक्रिया है जो बचपन से शुरू होकर जीवन भर चलती है। बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए सबसे पहले हमें उन पर भरोसा करना होगा।
1: जी हाँ,
0: हमें उन्हें अवसर देने होंगे ताकि वे स्वयं अनुभव प्राप्त कर सके और अपनी क्षमताओं को पहचान सके।
1: बिल्कुल,
0: हमें यह भी स्वीकार करना होगा श्रोता साथियों कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि बच्चा गलती करता है तो उसे असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझाना चाहिए। बच्चों को हर समय बचाने की बजाय उन्हें समस्याओं का सामना करना और समाधान खोजना सिखाना अधिक आवश्यक है। याद रखिए कि जिम्मेदारी सिखाने का सबसे बड़ा मंत्र है भरोसा दीजिए, अवसर दीजिए, धैर्य रखिए और गलतियों से सीखने दीजिए और हर छोटी प्रगति की सराहना कीजिए। जब हम बच्चों को जिम्मेदारी निभाने का अवसर देते हैं कशिश, तो हम न केवल उनका वर्तमान संवारते हैं बल्कि उनके भविष्य को भी मजबूत बनाते हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जिम्मेदार बच्चे ही आगे चलकर आत्मनिर्भर, संवेदनशील और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने वाले नागरिक बन पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, दोस्तों कह सकते हैं कि बच्चों को जिम्मेदार बनाना केवल उन्हें कुछ काम सौंप देने तक सीमित नहीं होता है।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये उन्हें जीवन के लिए तैयार करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। साथियों, हम कह सकते हैं अंजलि जी कि आज जो बच्चा अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समझना सीखता है, वही आगे चलकर बड़े निर्णय लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम बनता है।
0: जी जी,
1: इसलिए साथियों जिम्मेदारी को केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन कौशल के रूप में हमें देखना चाहिए। साथ ही हमें ये भी समझना जरूरी है कि जिम्मेदारी का विकास डर, दबाव या सजा से नहीं होता। यदि बच्चे किसी काम को केवल डांट के डर से करते हैं साथियों, तो वे उस काम का महत्व कभी नहीं समझ पाएंगे।
0: जी जी,
1: ऐसे में वास्तविक जिम्मेदारी तब विकसित होती है जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके कार्यों का असर उनके अपने जीवन और दूसरों पर भी पड़ता है। अंजलि जी, जब वे ये समझने लगते हैं कि उनके प्रयास परिवार, विद्यालय और समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तब ये जिम्मेदारी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो अंत में श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि जिम्मेदार बच्चे केवल अपने परिवार का गौरव नहीं बनते, बल्कि वे समाज की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। वे भविष्य के ऐसे नागरिक बनते हैं जो अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं, और जो एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस तरीके से आज कार्यक्रम में कशिश हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमें बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहिए, तो उसकी शुरुआत हम कब करें और कैसे करनी चाहिए। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है संवेदना के बिना अधूरी है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब हम डॉक्टर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करता है।
0: जी जी।
1: लेकिन क्या केवल दवाइयां देना ही डॉक्टर का काम है? क्या केवल मेडिकल की डिग्री हासिल कर लेना ही डॉक्टर बन जाना है? शायद नहीं। एक सच्चा डॉक्टर वो है कशिश जो मरीज के दर्द को महसूस करे, उसकी चिंता को समझे और उसे ये भरोसा दिलाए कि वो अकेला नहीं है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि हमारे दोस्तों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है, तो कार्यक्रम के उसी दस्तूर को निभाते हुए हम दोस्तों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत पहले सुनवा देते हैं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, संवेदना के बिना अधूरी है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले भी हमारे साथियों को ये बताया था कि जब भी हम डॉक्टर शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो बीमारियों का इलाज करता है,
1: बिल्कुल,
0: लोगों को स्वस्थ बनाता है और जीवन बचाने का कार्य करता है। साथियों, डॉक्टर बनने के लिए वर्षों की कठिन पढ़ाई, प्रशिक्षण, अनुशासन और अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन प्रश्न ये है, क्या डिग्री प्राप्त कर लेना, आधुनिक चिकित्सा ज्ञान हासिल कर लेना या फिर तकनीक रूप से दक्ष हो जाना ही अच्छे डॉक्टर की पहचान है? तो इसका उत्तर है जागृति जी, नहीं। क्योंकि एक डॉक्टर के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है संवेदना।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक मुस्कान, एक भरोसेमंद शब्द और एक संवेदनशील व्यवहार मरीज के लिए किसी दवा से कम नहीं होता है। युवा साथियों, डॉक्टर बनना केवल एक करियर नहीं है बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें किसी इंसान का जीवन हमारे हाथों में होता है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: जब कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो वो अपना सबसे कीमती धन, अपना जीवन डॉक्टर के भरोसे छोड़ देता है।
0: जी जी,
1: ऐसे में डॉक्टर का कर्तव्य है केवल इलाज करना नहीं बल्कि मरीज का मनोबल बनाए रखना। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत से युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है श्रोताओं, लेकिन डॉक्टर बनने की तैयारी करते समय हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि चिकित्सा सेवा का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि संवेदना का मतलब केवल किसी के दुख पर दुखी हो जाना नहीं होता, बल्कि इसका वास्तविक मतलब है किसी व्यक्ति की परिस्थिति को समझना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही उसकी सहायता करने की इच्छा रखना। साथ ही जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तब वह केवल शारीरिक रूप से बीमारी लेकर नहीं जाता, उसके साथ कई चिंताएं भी होती हैं, जैसे कि बीमारी का डर, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक समस्याएं और मानसिक तनाव। ऐसे समय में डॉक्टर की मधुर वाणी और धैर्य उस मरीज की आधी बीमारी को तो खत्म ही कर देते हैं।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि डॉक्टरी को हमेशा से एक सेवा कार्य माना गया है और समाज में डॉक्टर को तो भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। क्योंकि जागृति जी, डॉक्टर ही वह व्यक्ति होता है जो जीवन बचाने का प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, और हम कह सकते हैं कि आज का युवा कल का डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और नेता बनेगा। यदि युवावस्था में ही संवेदनशीलता विकसित नहीं हुई तो भविष्य में समाज केवल कुशल पेशेवर से भर जाएगा। लेकिन श्रोताओं, अच्छे इंसानों की कमी हो जाएगी। संवेदनशीलता हमें दूसरों की समस्याओं को समझना सिखाती है, ये हमें सहयोग करना सिखाती है, करुणा और सेवा की भावना देती है। कशिश, जब कोई युवा डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो उसे किताबों के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी सीखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि श्रोताओं, मेडिकल की किताबें शरीर का विज्ञान सिखाती है लेकिन संवेदना इंसानियत का विज्ञान सिखाती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में विद्यार्थियों को शरीर की संरचना और रोगों के कारण का ज्ञान दिया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी सीखना चाहिए कि मरीज से बात कैसे की जाती है, उनकी भावनाओं को समझा कैसे जाता है और कठिन परिस्थितियों में कैसे सहयोग दिया जाता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, चिकित्सा शिक्षा में मानवीय मूल्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो समाज को अधिक संवेदनशील डॉक्टर मिल सकते हैं। हम कह सकते हैं जागृति जी की बीमारी केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि मन को भी कमजोर कर देती है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार मरीज सोचने लगते हैं कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, मेरा भविष्य क्या होगा या मेरा परिवार मेरे बिना कैसे चलेगा।
1: जी हाँ,
0: ऐसी स्थिति में डॉक्टर के सकारात्मक शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो मरीज को नई शिक्षा और शक्ति दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि एक मुस्कान, एक आश्वासन और कुछ प्रेरणादायक शब्द दोस्तों कई बार दवाइयों से भी अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम बता रहे हैं हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कि संवेदना के बिना अधूरी है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी संवेदना के बिना अधूरी है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया। इस गीत से पहले हमने जाना था कि संवेदना आखिर क्या है और क्यों जरूरी है। साथ ही हमने डॉक्टर केवल पेशा नहीं एक जिम्मेदारी है इसको लेकर भी बात की थी। तकनीक बड़ी है लेकिन संवेदना की जरूरत आज भी बड़ी है ये भी हमने बात बताई थी हमारे श्रोता साथियों को। और युवाओं को क्यों सीखनी चाहिए संवेदनशीलता ये भी हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को बताया था। यही श्रोता साथियों अगर आपको बताए मरीज और डॉक्टर के रिश्तों के बारे में तो श्रोताओं आपसे कहना चाहेंगे कि हर सफल इलाज की नींव विश्वास पर टिकी होती है।
1: जी जी।
0: जब मरीज डॉक्टर पर विश्वास करता है कशिश तो वो उपचार के प्रति सकारात्मक रहता है और जब डॉक्टर मरीज की बात ध्यान से सुनता है तो वो बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद की कमी हो जाए तो विश्वास भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर को केवल अच्छा चिकित्सक ही नहीं बल्कि अच्छा श्रोता भी होना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी। इसी के साथ अगर ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील डॉक्टरों की आवश्यकता को लेकर हम बात करें तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश भारत की सबसे बड़ी आबादी गांव में रहती है।
0: बिल्कुल।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आर्थिक समस्याएं कुछ रहती है या कभी कभार जागरूकता का अभाव भी रहता है। ऐसे क्षेत्रों में जागृति जी कार्य करने वाले डॉक्टर यदि संवेदनशील होंगे तो वे केवल मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि संवेदना डॉक्टर को नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करती है। जो संवेदनशील डॉक्टर होते हैं वे मरीज के हित को सर्वोपरि रखते हैं।
0: जी हाँ।
1: ईमानदारी से उन्हें सलाह देते हैं, अनावश्यक उपचार से बचाते हैं और मरीज की गोपनीयता का भी सम्मान करते हैं।
0: जी
1: और यही गुण चिकित्सा पेशे की गरिमा बनाकर रखती है जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश। और संवेदनशील डॉक्टर केवल कॉलेजों में नहीं बनते बल्कि परिवार, समाज और संस्कारों से भी बनते हैं। जब बच्चों को बचपन से सेवा, सहयोग और दूसरों की मदद करने की शिक्षा दी जाती है तब वे बड़े होकर संवेदनशील नागरिक बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, समाज को भी डॉक्टर का सम्मान करना होगा और युवाओं को चिकित्सा सेवा के मान्य पक्ष के बारे में जागरूक करना होगा।
1: जी हाँ।
0: युवा साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो केवल परीक्षा की तैयारी मत कीजिए, अपने भीतर दया भी लाइए, करुणा और संवेदना भी विकसित कीजिए। याद रखिए, मरीज हमारे ज्ञान को तभी स्वीकार करेगा जब उसे हमारे व्यवहार में अपनापन महसूस होगा। एक संवेदनशील डॉक्टर हजारों लोगों के जीवन में आशा का दीपक जला सकता है। वो केवल रोग नहीं मिटाता कशिश बल्कि लोगों के मन से भय और निराशा भी दूर करता है।
1: जी हाँ।
0: आज की बातों का यही सहारे श्रोता साथियों कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया केवल किताबों, प्रयोगशालाओं, परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें ज्ञान के साथ साथ मानवता, करुणा और संवेदना का होना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: एक डॉक्टर की पहचान उसकी डिग्री से नहीं होती बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मरीज को दवा देना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे विश्वास देना।
1: जी जी।
0: तो श्रोता साथियों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपने भीतर संवेदनशीलता और मानवता को हमेशा जीवित रखें।
1: बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों, कहा जा सकता है कि डॉक्टर बनना केवल एक पेशेवर उपलब्धि नहीं है बल्कि मानवता की सेवा का संकल्प है। ऐसे में चिकित्सा ज्ञान, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबकी आत्मा संवेदना है जागृति जी। और बिना संवेदना के चिकित्सा केवल उपचार बनकर ही रह जाती है जबकि संवेदना उसे सेवा और मानवता का रूप प्रदान करती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमारे श्रोता साथियों से कहना ये बिल्कुल उचित है कि संवेदना के बिना डॉक्टर बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अधूरी है। एक सफल डॉक्टर वही है साथियों जो मरीज के शरीर के साथ साथ उसके मन को भी समझे।
0: जी हाँ।
1: उसकी पीड़ा को भी महसूस करे और उसे स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास दे। तो युवा साथियों, यदि आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो केवल किताबों से ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने हृदय में करुणा और संवेदना भी विकसित कीजिए।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए कि एक डिग्री आपको डॉक्टर बना सकती है लेकिन आपकी संवेदनशीलता ही आपको लोगों के दिलों में स्थान दिलाएगी।
0: बिल्कुल।
1: मानवता, सेवा और संवेदना से साथियों डॉक्टर ही समाज की सच्ची धरोहर होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज की जो बातें हैं वो हमें एक बहुत गहरी सीख भी देकर जा रही है। दुनिया में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे हमें जो अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकते हैं लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संवेदनशीलता से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। श्रोताओं, डॉक्टर का पेशा केवल शरीर का उपचार करने का नहीं बल्कि टूटते हुए रिश्तों को संभालने और निराश मन में उम्मीद जगाने का भी है।
1: बिल्कुल।
0: जब कोई मरीज अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है तो वो केवल इलाज नहीं खोज रहा होता बल्कि वो एक ऐसे इंसान की तलाश में होता है जो उसकी पीड़ा को समझ सके। इसीलिए चिकित्सा विज्ञान की असली ताकत केवल दवाओं और उपकरणों में नहीं श्रोताओं बल्कि उस मानवीय स्पर्श में छिपी होती है जो मरीज को ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, यदि आप जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने सपनों के साथ अपने दिल को भी बड़ा बनाइए। किताबें आपको ज्ञान देंगी, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, अनुभव हमें कुशल बनाएगा, लेकिन संवेदना हमें ऐसा व्यक्तित्व देगी जिसे समाज हमेशा सम्मान और प्रेम से याद करेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए याद रखिए, सफलता का अर्थ केवल ऊंचे पद तक पहुंचना नहीं है। सफलता तब है जब हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आए, किसी की आंखों में उम्मीद जग जाए और किसी का जीवन बेहतर बन सके। इसलिए हम सबके मन में ऐसा होना चाहिए श्रोता साथियों कि हम ऐसे भारत को बनाने का संकल्प लें जहां डॉक्टर केवल रोगों का उपचार न करें बल्कि मानवता की सेवा का सबसे सुंदर उदाहरण बने।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि भविष्य उन्हीं के हाथों से सुरक्षित होता है जिनमें ज्ञान के साथ करुणा भी होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में इतना योग्य जरूर बनिए कि लोग आपकी प्रतिभा की सराहना जरूर करें, और इतने संवेदनशील जरूर बनिए कि लोग आपकी मानवताओं को कभी ना भूलें।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है सफेद कोट की असली पहचान डिग्री नहीं होती, संवेदना से भरा हुआ दिल होता है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूंगी। विदा लेने से पहले आपको पता बताना चाहेंगे, ताकि आज की जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको कैसी लगी, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपने

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि विषय से आपको अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है वन महोत्सव आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की विरासत है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, वन महोत्सव हमें ये याद दिलाता है कि पेड़ केवल लकड़ी या ईंधन का स्रोत नहीं है, बल्कि वे जीवन के रक्षक हैं। एक वृक्ष अपने पूरे जीवन काल में हजारों लोगों को स्वच्छ हवा देता है,
0: बिल्कुल,
1: जल संरक्षण में मदद करता है और पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखता है। श्रोता साथियों, जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति की अनमोल संपदा सौंपी है, उसी प्रकार हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली के समृद्ध विरासत छोड़ के जाए, क्योंकि हरियाली का हमें सम्मान करना होगा, तभी सुरक्षित हमारा भविष्य होगा।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़, ये सारी समस्या लगातार बढ़ रही है
1: जी जी।
0: और इन समस्याओं का एक बड़ा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। जब जंगल कम होते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और धरती का तापमान बढ़ने लगता है
1: जी हाँ।
0: ऐसे समय में वन महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अभियान बन जाता है। श्रोताओं, पेड़ धरती के प्राकृतिक एयर कंडीशनर है, वे वातावरण को ठंडा रखते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं और जीवन को संतुलित भी बनाते हैं। अंजलि
1: जी जी,
0: यदि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे तो हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि वन महोत्सव का संदेश केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि वन केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते हैं बल्कि जैव विविधता को भी सुरक्षित रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जंगल लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों और वनस्पतियों का घर है। यदि जंगल समाप्त हो जाएंगे तो अनेक प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा।
0: जी हाँ,
1: वन महोत्सव हमें यह समझाता है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस श्रृंखला को बचाने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को हम कह सकते हैं कि आज विकास के नाम पर तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है। सड़कें, भवन और औद्योगिक परियोजनाएं जरूरी है, लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि हम केवल विकास पर ध्यान देंगे और प्रकृति की अनदेखी करेंगे तो भविष्य में हमें गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। वन महोत्सव हमें संतुलित विकास की राह दिखाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की विरासत छोड़ना केवल सरकार का काम नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति, श्रोता साथियों, अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो पूरे देश में हरियाली का विस्तार हो सकता है। पौधा लगाना आसान है लेकिन उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखना असली सेवा है। गाँव की भूमिका इस अभियान में और विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारत की श्रोता साथियों बड़ी आबादी गाँव में रहती है और गाँव का जीवन जागृति जी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यदि ग्रामीण समुदाय संरक्षण का संकल्प ले लें तो हरियाली को बचाने का बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: सामुदायिक वन, चारागाह और जल स्रोत का संरक्षण गाँव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि गाँव का अगर हरियाली आएगी तो खुशहाली का संदेश हम अपने आप बता पाएंगे। श्रोताओं, युवाओं और बच्चों की भागीदारी वन महोत्सव को और अधिक प्रभावी बना सकती है। आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं अंजलि, और यदि बचपन से ही हम उन्हें प्रकृति के महत्व की शिक्षा देंगे तो वे बड़े होकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: स्कूल और कॉलेजों में वृक्षारोपण अभियान केवल औपचारिकता न होकर जीवन का संस्कार बनना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि युवाओं में ऊर्जा, उत्साह और नई सोच होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि युवा हर वर्ष कुछ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लें तो पर्यावरण संरक्षण का अभियान नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके भी युवाओं को हरियाली के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है वन महोत्सव को लेकर, हम जान पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की विरासत क्या होगी। तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से युवाओं की भागीदारी होती है वन महोत्सव को प्रभावी बनाने में। श्रोता साथियों, वन महोत्सव का संबंध केवल पर्यावरण से नहीं है बल्कि आर्थिक समृद्धि से भी है। फलदार, औषधीय और उपयोगी वृक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। वृक्ष किसानों की आय बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी प्रकार हरियाली केवल प्रकृति की रक्षा नहीं करती है बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम अक्सर पूंजी का अर्थ धन से लगाते हैं, लेकिन यदि पृथ्वी पर स्वच्छ हवा ही न बचे, पीने योग्य पानी न रहे, तापमान असहनीय हो जाए तो धन का क्या महत्व रह जाएगा। हरियाली हमारी सबसे प्राकृतिक पूंजी है। श्रोताओं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, मिट्टी को बचाते हैं, जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं और वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। एक विकसित समाज वो नहीं होता जिसके पास बड़ी बड़ी इमारतें होती है, बल्कि वो होता है जहाँ मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब हम पेड़ को बचाते हैं तो वास्तव में हम भविष्य को बचा रहे होते हैं।
0: जी हाँ, क्योंकि जागृति जी, जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो वास्तव में हम भविष्य में निवेश करते हैं। वह पौधा आने वाले वर्षों में न केवल छाया देगा बल्कि स्वच्छ हवा, फल, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का आधार भी बनेगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, हर लगाया गया पौधा भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज लगाएंगे जो पौधे हम, कल उनका लाभ उठा पाएंगे हम। वन महोत्सव हमें यह सिखाता है कि प्रकृति से प्रेम करना केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियां हमें ये नहीं पूछेंगी जागृति जी कि हमने कितनी इमारतें बनाई थी, बल्कि हमसे ये पूछेंगी कि हमने उनके लिए कैसी धरती छोड़ी है। यदि आज हम हरियाली को बचाने और बढ़ाने का संकल्प ले लेते हैं तो हम अपने बच्चों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित जल, संतुलित जलवायु और सुंदर वातावरण की अमूल्य विरासत दे सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम अपने पूर्वजों से जो धरती पाकर आए हैं वो केवल हमारी नहीं है, उस पर आने वाली पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में बच्चे किताबों में जंगलों की तस्वीर देखकर पूछेंगे कि क्या सच में इतने बड़े जंगल हुआ करते थे। क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं? श्रोताओं, यदि नहीं तो हमें आज से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हर पीढ़ी का कर्तव्य अंजलि की वो अगली पीढ़ी को अपने से बेहतर परिस्थितियां सौंपे। यही सच्ची विरासत है और यही प्रकृति के प्रति हमारा धर्म है। श्रोताओं, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वे प्रकृति की जीवनदायिनी है। वन वर्षा को संतुलित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्थल को बनाए रखते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। कहीं हम देखते हैं कि भीषण गर्मी है, कहीं बाढ़ है और कहीं सूखे की मार है।
0: जी जी।
1: इन चुनौतियों का सबसे प्रभावी और प्राकृतिक समाधान अधिक से अधिक हरियाली है। जितने अधिक जंगल होंगे उतनी ही अधिक पृथ्वी की जीवन शक्ति मजबूत होगी। वनों के बिना पर्यावरण संतुलन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि वन महोत्सव केवल पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और भविष्य की सुरक्षा का संकल्प है। आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, घटते वन क्षेत्र और अनियमित वर्षा जैसी समस्या पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़ी है, तब वन महोत्सव का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: हमें याद दिलाता है कि यदि धरती को हरा भरा और जीवन को सुरक्षित रखना है तो पेड़ों का संरक्षण और नए पौधों का रोपण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वन महोत्सव का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह समाज के हर वर्ग, बच्चों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को पर्यावरण संरक्षण के एक साझा अभियान से जोड़ता है। जब पूरा समुदाय मिलकर पौधे लगाता है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाता है, तब पर्यावरण संरक्षण एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन बन जाता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हरियाली केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करती बल्कि आर्थिक समृद्धि का रास्ता भी खोलती है।
0: बिल्कुल,
1: फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे और वन आधारित उत्पाद लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। किसानों के लिए कृषि वानिकी की नई संभावना लेकर आई है। खेतों के किनारे लगाए गए पेड़ अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकते हैं। हरियाली मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती है और जल संरक्षण करती है और खेतों को मजबूत बनाती है। इस प्रकार अंजलि, हम कह सकते हैं कि पेड़ केवल पर्यावरण के रक्षक नहीं बल्कि विकास और स्वावलंबन के साथी भी है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि कई लोग सोचते हैं कि अकेले उनके प्रयास से क्या होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि एक व्यक्ति एक पौधा लगाएगा, एक परिवार पांच पौधे लगाए और एक गांव 1000 पौधे लगाए तो कल्पना कीजिए श्रोताओं की कितना बड़ा परिवर्तन संभव है। पर्यावरण संरक्षण किसी एक संस्था, सरकार या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी का साझा दायित्व है। जब हर नागरिक अपनी भूमिका निभाएगा तब हरियाली का सपना साकार होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पाए कि किस तरीके से वन महोत्सव जो है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत हो सकती है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: आनंददायी होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, और वो है निराशा। और निराशा से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि हम क्यों निराश होते हैं? बताना चाहूंगी दोस्तों कि कभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं, या फिर कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं तो कभी हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, कभी हमारे पास सही मार्गदर्शन भी नहीं होता। लेकिन साथियों, निराशा जीवन का अंत नहीं है, यह केवल हमें सोचने और सुधारने का संकेत देती है। असफलता केवल मार्गदर्शक होती है साथियों, लेकिन निराशा स्थायी नहीं होती। साथियों, ध्यान दीजिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर भी तो आता है ना। कभी कभी ना साथियों, हम बहुत छोटे परिणामों से निराश हो जाते हैं, लेकिन छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। साथियों, एक बात बताइए कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहे? यह सोच कर एक पल रुकिए और सोचिए कि कैसे आपने इस स्थिति से सीखा। जी हाँ दोस्तों, हर निराशा में छिपा होता है एक सीख और एक नया अवसर, जिसे बस हमें समझने की जरूरत होती है। यहीं मैं एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि निराशा केवल एक चुनौती है, अवसर नहीं। जी हाँ श्रोता साथियों, एक युवक था रोहित। वह अपने करियर में बहुत उत्साही था, लेकिन लगातार असफल होता रहा। हर नौकरी में रिजेक्ट, हर प्रयास में विफलता। धीरे धीरे रोहित निराश हो गया। वह सोचने लगा दोस्तों कि शायद मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास एक मित्र था। उसने रोहित से कहा कि असफलताएं तुम्हारा अंत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें सही राह दिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। फिर दोस्तों, रोहित ने अपनी गलती और स्थिति को समझा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी पसंद की नौकरी में सफल हुआ। तो साथियों, ये हमें कहानी सिखाती है कि जो गिरकर उठना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमें भी हमारे जीवन में ऐसा ही करना चाहिए कि हमें हमारी जो असफलताएं हैं, हमारी जो स्थिति है, उनसे बहुत सारी सीख मिल सकती है। और जब हम हमारे जीवन की कठिनाइयों को समझ जाते हैं, हमारे असफलता के पीछे के कारण को समझ जाते हैं ना साथियों, तो हम उन सारी चीजों में सुधार कर जीवन में नए मार्ग को अपना पाते हैं। यही श्रोता साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहाँ निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है? अगर साथियों आप मेरी इस बात का जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपसे सवाल किया ही था कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है। इस बात का जवाब श्रोता साथियों जब आप हमें देंगे ना, तो हमारे बहुत से दूसरे जो श्रोता साथी हैं, उन्हें भी अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करना और निराशा से किस तरीके से दूर रहते हैं ये सारी सीख मिल पाएगी। अब यही मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगी जिससे हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। साथियों, निराशा से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है खुद पर भरोसा रखें, यानी कि आपकी ताकत आपकी सोच में है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आप हर निराशा से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ जीवन में छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे कदम साथियों मनोबल बढ़ाते हैं। अच्छे मित्र और अच्छे लोगों के साथ जुड़े ताकि आपका जो जीवन है वो भी अच्छा बना रहे। और श्रोता साथियों, जीवन की सबसे बड़ी जो बात है वो हर किसी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वो है धैर्य। धैर्य जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति जीवन की हर समस्याओं हर कठिनाइयों से दूर रह सकता है। साथियों, कहना चाहूंगी हर निराशा में छिपा होता है एक सबक और एक नया अवसर। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात ये आती है साथियों कि अंधेरा जितना गहरा होता है ना, रोशनी उतनी ही तेज दिखाई देती है। हर कठिनाई हमारी ताकत बन सकती है अगर हम चाहें तो। कभी कभी दोस्तों हमें लगता है ना कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल भी हमसे बहुत दूर है और ताकत कम है। तब हमें ये याद रखना है कि हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन उसने कदम रोकने के बजाय और मेहनत की। साथियों, जरा सोचिए कि यदि महान वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर निराशा में ही रुक जाते तो आज हम उनके योगदान से वंचित रह जाते। इसलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो, कभी अपने प्रयासों को कम मत आंको और कभी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जीतता वही है जो गिर कर भी उठता है। हमें ये भी सोचना चाहिए दोस्तों कि सफलता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सच यह है कि बड़ी मंजिल भी छोटे कदमों से ही पूरी होती है। हर दिन जब हम छोटा प्रयास करेंगे, हर छोटे कदम निरंतर रखते रहेंगे और उन चीजों से नई सीख लेते रहेंगे, तो हम सफल अवश्य होंगे। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि अपने जीवन में एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं जो आपकी निराशा को दूर करे और आपके सपनों को करीब ले जाए। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। खुद पर भरोसा ही आपको निराशा से बाहर ले जाएगा। खुद पर भरोसा ही आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देगा। जब आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, जब आप सोचेंगे कि कठिनाइयाँ केवल अवसर है, जब आप सोचेंगे कि हर गिरावट से मैं मजबूत बनूंगा, तो निराशा आपके पास टिक ही नहीं पाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि निराशा से हम दूर कैसे रह सकते हैं। बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहूंगी।

साथियों, आज हमने जाना कि निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे बाहर निकलना हमारे ही हाथ में है। जब हिम्मत और प्रयास साथ हो तो निराशा कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर आता है। इसलिए निराशा में डूबने के बजाय एक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इसी संदेश के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhra.org, radio@vagdhra.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय हमारे जीवन से जुड़े एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है, आज हम डॉक्टर डे मना रहे हैं, जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है और इस दिवस का क्या महत्व है, साथ ही हम जानेंगे GST के महत्व को लेकर भी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हम जानते हैं कि डॉक्टर डे जो कि समाज के सच्चे जीवन रक्षक होते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम बीमार पड़ते हैं तब एक डॉक्टर केवल दवा ही नहीं देता कशिश, बल्कि उम्मीद, विश्वास और नया जीवन भी देता है। इसलिए डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हर वर्ष आज के दिन यानी कि 1 जुलाई के दिन भारत में डॉक्टर डे मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर का कार्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं होता है कशिश, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देना भी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर्स डे यानी कि चिकित्सक दिवस को लेकर। साथ हम देखते हैं अंजलि जी कि ये जो दिन है डॉक्टर्स डे, वो उन सभी डॉक्टरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का दिवस है जो दिन रात लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते बल्कि मरीजों को नया जीवन, नई आशा और आत्मविश्वास भी देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं अंजलि जी कि जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना या किसी गंभीर संकट से गुजरता है तब डॉक्टर ही वह व्यक्ति है जो सबसे पहले उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। डॉक्टर का पेशा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, जब भी जीवन में बीमारी, दुर्घटना या किसी प्रकार का स्वास्थ्य संकट आता है तब सबसे पहले जिस व्यक्ति की याद आती है वह है डॉक्टर।
0: जी हाँ,
1: डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, समर्पण, करुणा और मानवता का दूसरा नाम है। डॉक्टर अपने ज्ञान, अनुभव और अथक मेहनत से लाखों लोगों को नया जीवन देते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा जाता है कशिश की धरती पर यदि भगवान का कोई रूप दिखाई देता है तो वह एक डॉक्टर के रूप में ही दिखाई देता है।
0: बिल्कुल,
1: हर वर्ष 1 जुलाई को हम भारत में डॉक्टर डे मनाते हैं। यह दिन उन सभी डॉक्टरों को सम्मान और धन्यवाद देने का दिन है जिन्होंने अपने जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
0: जी हाँ।
1: यह दिन हमें याद दिलाता है श्रोता साथियों कि डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज ही नहीं करते बल्कि समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज चिकित्सा विज्ञान ने बहुत ही प्रगति कर ली है। पहले जिन बीमारियों का इलाज संभव नहीं था आज उनका सफल उपचार किया जा रहा है। लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे डॉक्टरों के वर्षों की मेहनत, अध्ययन और सेवा छिपी हुई है।
0: जी हाँ।
1: डॉक्टर बनने के लिए वर्षों तक कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके बाद भी उनका सीखना कभी समाप्त नहीं होता। नई नई बीमारियों और नई नई तकनीकों के अनुसार उन्हें लगातार स्वयं को अपडेट रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। और हम देखते हैं कि समाज में भी डॉक्टरों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि उन्हें दूसरा भगवान कहा जाता है। ऐसे में श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने ज्ञान, अनुभवों और मेहनत से अनगिनत लोगों का जीवन बचाते हैं।
1: जी हाँ।
0: राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में डॉक्टरों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है और हमें उनके प्रति सम्मान, विश्वास और सहयोग की भावना किस प्रकार से रखनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर का समाज में एक बहुत अधिक महत्व है। डॉक्टर समाज के सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक माने जाते हैं क्योंकि उनका कार्य केवल दवा देना नहीं बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देना भी है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, डॉक्टर का कार्य केवल अस्पताल में मरीजों को देखना ही नहीं होता है। वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल करते हैं, नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बच्चों का टीकाकरण करते हैं, बुजुर्गों का इलाज करते हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब किसी परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तब डॉक्टर केवल दवा नहीं देते बल्कि परिवार को मानसिक रूप से संभालते भी हैं।
0: जी जी।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज भी कई गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। ऐसे में डॉक्टर कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं देते हैं।
0: जी हाँ।
1: कई बार उन्हें रात में, बारिश में या दूर दराज के इलाकों में जाकर मरीजों का इलाज करना पड़ता है। संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: जी हाँ।
1: माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में डॉक्टर की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल और समय पर टीकाकरण जैसी सेवाएं डॉक्टरों की देखरेख में ही होती है।
0: जी
1: इन
0: हाँ।
1: सेवाओं के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर कम हो गई है और लाखों परिवारों को सुरक्षित भविष्य मिल पाता है।
0: बिल्कुल, हम देखते हैं श्रोता साथियों की जो डॉक्टर है वो हमारी बीमारियों की पहचान करते हैं और हमें सही उपचार की सलाह भी देते हैं, साथ ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी प्रदान करते हैं। अंजलि जी, एक अच्छे डॉक्टर की पहचान उनके ज्ञान, धैर्य, संवेदनशीलता और सेवा भावना से की जाती है। वह हर मरीज के साथ समान ही व्यवहार करते हैं और बिना किसी भेदभाव के इलाज करते हैं। श्रोता साथियों, अक्सर लोग डॉक्टर को केवल अस्पताल के काम करते हुए देखते हैं लेकिन दोस्तों उनके जीवन के संघर्षों को कोई नहीं समझ पाता।
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर बनने के लिए जैसा कि आपने बताया कि वर्षों तक कठिन पढ़ाई, प्रशिक्षण और निरंतर अभ्यास करना पड़ता है अंजलि जी, इसके बाद भी दोस्तों उनकी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती। कई बार उन्हें रात दिन भी बिना आराम किए गए मरीजों की सेवा करनी पड़ती है। साथ ही त्योहार में भी छुट्टियां उन्हें नहीं मिलती है। देखा जाता है कि पारिवारिक अवसर हो या कोई भी उनके घर में कह सकते हैं कि समारोह हो, वे अक्सर अस्पताल में ही समय बिताते हैं
1: जी हाँ,
0: ताकि किसी मरीज का जीवन बचाया जा सके।
1: बिल्कुल कशिश, एक अच्छे डॉक्टर की पहचान केवल उसके ज्ञान से नहीं होती बल्कि उसके व्यवहार से भी होती है। मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो केवल दवा नहीं चाहता बल्कि उसे भरोसा, अपनापन, सहानुभूति भी चाहिए होती है।
0: बिल्कुल,
1: डॉक्टर की एक मुस्कान और कुछ सकारात्मक शब्द मरीज के आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मीठे शब्द भी एक दवा की तरह काम करते हैं।
0: जी हाँ,
1: डॉक्टरों का जीवन बाहर से जितना आसान दिखाई देता है, वास्तव में श्रोता साथी उतना होता नहीं है। एक डॉक्टर बनने के लिए वर्षों तक कठिन परीक्षा, अनुशासन और त्याग करना पड़ता है। मेडिकल की पढ़ाई बहुत कठिन मानी जाती है। कई वर्षों तक लगातार अध्ययन, प्रशिक्षण, अस्पतालों में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति एक योग्य डॉक्टर बन पाता है।
0: जी जी।
1: इसके बाद भी उनका सीखना कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि चिकित्सा विज्ञान निरंतर बदलता रहता है। नई नई बीमारियां, नई दवाइयां, नई तकनीकें डॉक्टरों से लगातार सीखते रहने की अपेक्षा करती है।
0: जी
1: श्रोता साथियों, डॉक्टर का कार्य केवल बीमारी का उपचार करना नहीं है बल्कि बीमारी को होने से रोकना भी है।
0: जी जी।
1: आज अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों को स्वास्थ्य शिक्षा भी देते हैं। वे बताते हैं कि संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्वच्छता और समय पर स्वास्थ्य जांच करने से अनेक बीमारियों से बचा सकता है।
0: जी हाँ।
1: यदि लोगों को डॉक्टर की इन सलाहों का पालन करते हैं तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी काफी हद तक कम हो जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि डॉक्टरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही है। मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक लोगों को इन समस्याओं से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे यह समझाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि मन स्वस्थ रहेगा तभी जीवन भी संतुलित बना रहेगा। डॉक्टरों के सामने कशिश कई चुनौतियां आती हैं। कई बार उन्हें लगातार 12 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में उन्हें दिन रात की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा करनी पड़ती है और कई बार संसाधनों की कमी, अत्यधिक कार्यभार और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने गंतव्य से पीछे नहीं हटते। उनकी सबसे बड़ी पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि डॉक्टर हमारे समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया साथियों कि जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी, दुर्घटना या संकट में होता है तब सबसे पहले उसे डॉक्टर की ही जरूरत होती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि जी डॉक्टर न केवल दवाइयों से इलाज करते हैं बल्कि अपने व्यवहार, सहानुभूति और विश्वास से रोगी को मानसिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे देश और दुनिया ने श्रोता साथियों डॉक्टर के असाधारण सेवा को करीब से देखा था।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, जब हम लोग अपने घरों में सुरक्षित थे तब डॉक्टर अस्पतालों में दिन रात मरीजों की देखभाल कर रहे थे। दोस्तों, अनेक चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों का उपचार किया था।
0: जी जी,
1: इस कठिन समय ने यह सिद्ध कर दिया था श्रोता साथियों कि डॉक्टर वास्तव में समाज के सच्चे योद्धा हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। जब मरीज डॉक्टर पर भरोसा करता है और डॉक्टर की सलाह सही ढंग से मानता है तब उपचार अधिक प्रभावी होता है। इसलिए कभी भी बिना सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए, अधूरा इलाज नहीं छोड़ना चाहिए। स्वयं दवा लेना कई बार गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर डे केवल डॉक्टरों को बधाई देने का दिन नहीं है बल्कि यह दिन हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होने की प्रेरणा देता है। यदि हम समय पर जांच कराएं, संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, स्वच्छता बनाए रखें और नशे से दूर रहें तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। इससे डॉक्टरों का अनावश्यक बोझ भी कम होगा और समाज अधिक स्वस्थ बनेगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, अब यही बात आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि दोस्तों भारत की बड़ी आबादी गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखी जाती है। ऐसे में डॉक्टर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है।
0: जी जी,
1: यदि अंजलि जी गांव में पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे तो कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। हम देख सकते हैं कि इससे शिशु मृत्यु में कमी श्रोता साथियों आएगी अगर डॉक्टर हर जगह पर उपलब्ध होंगे तो, और लोग भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे क्योंकि डॉक्टर केवल इलाज ही नहीं करते बल्कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए उपाय भी बताते हैं।
0: जी हाँ,
1: वे संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, स्वच्छता, समय पर टीकाकरण और पर्याप्त नींद के साथ साथ नशे से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। आज अंजलि जी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा तेजी से बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में डॉक्टरों से सलाह लेना हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर लोगों को समय समय पर जांच कराने और स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि डॉक्टर डे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जाता है कि रोकथाम इलाज से बेहतर होता है।
1: यह
0: बात डॉक्टरों के कार्य में पूरी तरह दिखाई देती है। एक अच्छा डॉक्टर केवल दवा लिखना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना नहीं मानता बल्कि वह मरीज को यह भी समझाता है कि भविष्य में वही बीमारी दोबारा न हो इसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि आज डॉक्टर केवल इलाज करने वाले विशेषज्ञ नहीं बल्कि स्वास्थ्य मार्गदर्शक भी बन चुके हैं।
1: जी हाँ,
0: डॉक्टरों का योगदान बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे कई बार बीमार पड़ते हैं। समय पर टीकाकरण, सही पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और उचित उपचार के माध्यम से डॉक्टर बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। स्वस्थ बचपन ही श्रोता साथियों स्वस्थ युवा और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। बुजुर्गों के जीवन में भी डॉक्टरों की भूमिका विशेष महत्व रखती है। बढ़ती उम्र उम्र के साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, हृदय रोग और आंखों की समस्या बढ़ने लगती है। डॉक्टर न केवल श्रोता साथियों इन बीमारियों का उपचार करते हैं बल्कि उन्हें बेहतर जीवन शैली अपनाने और नियमित जांच कराने की भी सलाह देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे बुजुर्ग अधिक आत्मनिर्भर और स्वस्थ जीवन जी पाते हैं।
1: चिकित्सा
0: क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी ने क्रांति ला दी है। डिजिटल एक्सरे, MRI, CT स्कैन, कई सारी ऐसी तकनीकें हैं जिन्होंने इलाज को पहले से बेहतर और सटीक और प्रभावी बना दिया है। लेकिन इन सभी मशीनों और तकनीकों का सही उपयोग तभी संभव है जब एक प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर उसका संचालन करे। इसलिए तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, डॉक्टर का महत्व कभी कम नहीं हो सकता।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि डॉक्टरों का सम्मान करना हमें कितना जरूरी है। उपचार के दौरान धैर्य रखना, अस्पतालों के नियमों का पालन करना, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना, साथियों उनके प्रति विश्वास बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान है, वे कठिन परिस्थितियों में निरंतर सेवा करते हैं साथियों, और उन्हें समाज के सहयोग एवं सम्मान की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए केवल डॉक्टरों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है।
0: जी
1: हमें स्वयं भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा।
0: बिल्कुल,
1: नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां नहीं लेनी है, टीकाकरण का पूरा ध्यान रखना है, साथ ही स्वच्छ रहकर स्वस्थ पानी पीना है, पौष्टिक भोजन करना है और प्रतिदिन व्यायाम करना है ताकि हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ रह सके।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने जाना कि डॉक्टरों का क्या महत्व है और किस तरीके से डॉक्टर हमारे भगवान के तौर पर हमारे जीवन की रक्षा करते हैं।
1: जी जी,
0: आगे हम जानेंगे GST का क्या महत्व है, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: करने और कर भुगतान जैसे अधिकांश प्रक्रिया जटिल माध्यम से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे समय की बचत होती है और कागजी कार्रवाई कम होती है। जीएसटी केवल सरकार के लिए राजस्व जुटाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक व्यवस्था और व्यवस्थित बनाने को महत्वपूर्ण भूमिका देती है। कर से प्राप्त धन का उपयोग सड़क, पुल, रेलवे, अस्पताल, विद्यालय, पेयजल, बिजली और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में किया जाता है। इसलिए जब नागरिक ईमानदारी से कर का भुगतान करता है श्रोता साथियों, तो वे प्रत्यक्ष रूप से देश के विकास में योगदान देते हैं। आम नागरिकों के लिए जिस जीएसटी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि खरीदी के समय पक्का बिल लेने की आदत बढ़ती है। जब उपभोक्ता बिल लेते हैं तो व्यापार में पारदर्शिता आती है और कर चोरी की संभावनाएं कम होती है। इससे सरकार को सही राजस्व प्राप्त होता है और विकास कार्यों को गति मिलती है।
1: जी हाँ जिले जी, हम देखते हैं कि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की है। इससे आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ी है और कर संग्रह की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बनी है।
0: जी जी
1: दोस्तों, एकीकृत प्रणाली होने से व्यापारियों का समय और लागत दोनों कम हुए हैं। इससे उत्पादन और वितरण प्रणाली अधिक व्यवस्थित हुई है।
0: जी हाँ।
1: और सरकार को भी संग्रह में वृद्धि हुई है, जिससे विकास योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।
0: जी हाँ कशिश, व्यापारियों के लिए भी जीएसटी कई दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हुआ है। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर नियम होने के कारण व्यापार करना कठिन होता था।
1: जी
0: हाँ। अब पूरे देश में अपेक्षाकृत एक सामान्य व्यवस्था होने से माल की आवाजाही जो है वो आसान हो गई है। इससे परिवहन में समय की बचत हुई है और व्यापारी जो है वो प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बना पा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: छोटे व्यापारियों के लिए भी सरकार ने अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। निर्धारित सीमा तक कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायों के लिए सरल कर व्यवस्था और कह सकते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे व्यवस्थाएं बनी गई है, जिससे छोटे उद्यमियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। ग्रामीण भारत में भी जीएसटी का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज गाँव में भी डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन व्यापार और छोटे उद्योगों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में जीएसटी की जानकारी ग्रामीण उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए भी उपयोगी है। जब वे सही तरीके से व्यापार करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो उसके व्यवसाय में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी छोटी मोटी करते ही रहेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जीएसटी को लेकर ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि जीएसटी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है।
1: बिल्कुल,
0: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन रिटर्न जैसी व्यवस्थाओं ने व्यापारी को आधुनिक बनाया है। इससे भ्रष्टाचार कम होने और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली है। किसी भी नई व्यवस्था की तरह जीएसटी को लागू करने के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। शुरुआत में कई छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में कठिनाई हुई। कुछ लोगों को नए नियम के अनुरूप अपने व्यवसाय में बदलाव करना पड़ा, लेकिन समय के साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और तकनीकी सहायता के कारण अधिकांश लोगों ने इस व्यवस्था को अपनाया। श्रोता साथियों, जीएसटी हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है, ईमानदारी का। जब हर नागरिक और व्यापारी सही बिल देता है और लेता है और समय पर कर का भुगतान करता है और नियमों का पालन करता है, तब देश की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होती है। ईमानदारी केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का आधार भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि इससे देश में पारदर्शिता बढ़ी है। अब श्रोता साथियों, हर लेन देन डिजिटल माध्यम से दर्ज होता है, जिससे कर चोरी की संभावनाएं कम हो गई हैं।
0: बिल्कुल जी हाँ कशिश, जीएसटी का वास्तविक महत्व केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को एकीकृत, पारदर्शी और आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम भी है। यह व्यवस्था व्यापार को सरल बनाने, कर को चोरी कम करने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और सरकारी विकास कार्यक्रमों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोता साथियों, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा पक्का बिल लें, कर नियमों का सम्मान करें, ईमानदारी से आर्थिक गतिविधियों में भाग लें और प्रत्येक नागरिकों को इन जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब देश की कर व्यवस्था सरल होती है, व्यापार आसान होता है और नागरिक ईमानदारी से कर चुकाते हैं, तब विकास की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। जीएसटी इसी सोच को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में कर प्रणाली को एक समान बनाना था। पहले अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर कर अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे। इससे व्यापारियों को अनेक नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन जीएसटी केवल एक कर व्यवस्था नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक है। यह व्यवस्था व्यापार को सरल बनाने, कर प्रणाली को व्यवस्थित करने और विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ,
0: प्रत्येक नागरिक कशिश बिल लेने की आदत रखेगा और उन सारी चीजों को समझेगा, तो हम देखेंगे कि हमारा जो देश है वो तरक्की कर पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि साथियों, जीएसटी केवल एक कर प्रणाली नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक एकता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: जी हाँ,
1: ये देश को एक मजबूत, संगठित और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी जीएसटी के नियमों को समझे, उनका पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के विकास में योगदान दें।
0: जी हाँ,
1: यानी कि श्रोता साथियों, जीएसटी ने भारत की हर कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। अंजलि जी,
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि जीएसटी क्या है और इसका क्या महत्व है, और इसी के साथ हम डॉक्टर के महत्व को भी कार्यक्रम में जान पाए थे। आशा करते हैं कि ये दोनों विषय की जो महत्वपूर्ण बातें रही वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागवत सी। फिल्म का नाम है मोहब्बती गीत के बोल हैं चलते चलते। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटिया, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गाजियाबाद से शिषपाल जी। इस गीत के अनुरोध करता है बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम MP से जगदीश ढाकर, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह, शिवांगी जी। इस गीत के अनुरोध करता है हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत जी, लवप्रीत कौर और करमजीत सिंह। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं कोका बलाई से उत्तम सिंह जंगिल, मोरज जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजित कुमार जंगिल, आरुषि जंगिल, नंदिनी जंगिल। सुकरी कला से जुड़ना चाह रहे हैं अमित जंगिल, सुकुन जंगिल, आरुषि ओशिका जी जंगिल और अंजलि जी जंगिल। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चलते चलते। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडपुर सिटी से। फिल्म का नाम है जाने अनजाने में, गीत की बोल है तेरी नीली नीली आंखें। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने और लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सभ्यान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाह जी मुलानी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इस गीत के अनुरोध करता है पंडपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समर राज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा, अंजलि और श्वेता जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही तेरी नीली नीली आंखों की। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मजनू का टीला सिंह। फिल्म का नाम है चौकीदार, गीत के बोल ही ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। इस गीत की फरमाइश करता है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ना चाह रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहेजी मलिक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं सलार पलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और केसरुद्दीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रही नागपुर से विठल जाधव, अनुषिया जाधव, पवन राजी जाधव। छत्रपति संभाजीनगर से जुड़ना चाह रही महेश इगली, संध्या इगली, स्वराज्य इगली। इसे भी जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद वर्मा, मुरली अमित जी वर्मा। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर। गीत के बोल हैं खता तो जब ही हम हाले दिल। इस गीत की फरमाइश करता है नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयू सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। इसे भी जुड़ना चाह रही है मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक आदित्य जी का साना। इस गीत के अनुरोध करता है मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सुप्रील जी धाड़ी। इसी बीच जुड़ना चाह रही नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रशांत यादव, सोनम यादव, बीबी सिया यादव, पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़ रही नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा जी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रही हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया।

पप्पी जी भाटिया। इस गीत की अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटी, वंदना कीटी, कार्तिक कीटी, भाविका जी कीटी और कीटी के कीटी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोज डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो, विलेज डिकेस्ट्रो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दादरी गेट भवानी से। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, गीत के बोल हैं मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। इस गीत की फरमाइश करता है कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनाल जी मेहरा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं, कुंभार गली श्री राम पोसी, अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका दली, पुनावली पुणे से जुड़ रही हैं, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे सहारनपुर से समेद मशरूम, साइना हसन, अक्सान आजिया, आफिया और इब्राहिम और सदाम जी, अधिपली जी। इस गीत के अनुरोध करता है हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी। कालेगांव जाफराबाद से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल, भारती जी बघेल। इस गीत के अनुरोध करता है यतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, सुप्रसाद जायसवाल, अपनम जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

0: दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोलते मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुंडी सेंटर 5 सूर्य नगर जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है पहली तारीख, गीत के बोल हैं दिन है सुहाना आज पहली तारीख है। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमांश जी। इसी बीच जुनाचार्य कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इसी बीच जुड़नाचार्य कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। नवाशहर पंजाब से जुड़नाचार्य गंगदीप थांडी, दीप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बीबी वामिका और वाणी जी थांडी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही दिन है सुहाना आज पहली तारीख है। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: दिन है सुहाना आज पहली।

बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना। शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना।

मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमा

0: मजेदार है, दी खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाचने का दसाना, पाचने का दसाना, पाचने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत की बोल ही ये धरती चांद सितारे। इस गीत की फरमाइश करते हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नई बस्ती गंजुटवारा से यासिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौसीफ, तोइनूर और कलीम अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोली, योगिता प्रणाली, पार्थ और हिमांश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार जी और पूजा जी। साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं बदाऊ से इशरत खान, शायरा खान, रफियो खान, सावरीन बेगम, हफसा खान, सैफ खान, ईशान खान, आजाम खान और अहान खान। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना जी कुम्भार। पुनावले पुणे से जुड़ना चाह रही अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और साइशा सोनवने जी। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुत्रमेश शाहू जी। डुमराव बिहार से जुड़ना चाह रही हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बाजार बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी श्रोता साथी जुड़ रही हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल हैं ये धरती चांद सितारे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा से। फिल्म का नाम है हमराज, गीत के बोल हैं तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है बाबा खुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान और डुग्गू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जाखुत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से हरजिंदर सिंह चिंपा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता जी। मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तुम अगर साथ देने का वादा करो। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। तो जैसा कि आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था साथियों, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो साथियों, फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है राजकोट से। फिल्म का नाम है, श्रोता साथियों बताना चाहूंगी, गीत के बोल हैं जाने दो जाने दो मुझे जाना है। फिल्म का नाम है शहंशाह। फरमाइश करता जुड़ रहे राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट, जस्मीन भट्ट और भी साथी जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गंजुटवारा से हैं शमशुल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राधा, चैतन्य मस्किन, मीखा मस्किन। चंडीगढ़ से हैं राहुल, रचिता खुराना, केशरी धन खुराना जी। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। साथी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगे, महेश प्रिगेश, प्रीतेश संगी, पूरा संगी, परिवार सदस्यगण। झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अंजान, सावन नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश की गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जाने दो मुझे जाना है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों मॉडल टाउन करनाल से। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया। गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे करनाल से सुदिन उत्तन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, शशि बालाजी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। यवतमाल से हैं निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरा वर्पिता जी। धनौरी तेलीवाला से हैं निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी। चोकोनटी बुलंद शहर से हैं मोहम्मद सिद्धबासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन। अस्तपुरा जिला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, रिजय बेगम अंसारी, सादिक अंसारी। गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवितन में लक्ष सोहिनी, मोहनितिक बलवीर सिंह जी। पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि जी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, बताना चाहूंगी, पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सड़क, गीत के बोल हैं हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। इसी बीच हमारे और भी दोस्त पसंद करते हैं इसी गीत को। जुड़ रहे हैं मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये। कालापारा सरगुजा से जुड़ रहे हैं रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम रजवाड़े। करेली बरेली से आमिर अंसारी, नसीन अंसारी, शमा अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनोर अंसारी। बरकाकाना से अफजाल ताज, साईं सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपिसाई, अफजल मलिक। बीरचार महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी कुलथे जी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से भी अगली फरमाइश आई है। बताना चाहूंगी, फिल्म का नाम है साथियों बाजीगर। गीत के बोल हैं बाजीगर ओ बाजीगर। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने, और फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं नाशिद शेख, नादिया नाशिद, शाजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं खंडवा मध्य प्रदेश से, सैलिया डावर, हलीमा डावर, जिक्र डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी। जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। पड़ापड़ा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, कर्ण राहुल साहू, चंपा साहू। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविकारिणी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन। लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमल कांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। अंबाला से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकेत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। किशोरनगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शिल्ला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं बाजीगर ओ बाजीगर। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है संभाजी नगर छत्रपति से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बताना चाहूंगी, राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। इस गीत को आवाज दी अलका याग्निक जी, उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं संभाजी नगर महाराष्ट्र से, अनिल कुमार गोड़ के, वैशानी अलिल, प्राजक्ता गोड़ के, विष्णवी गोड़ के, गायत्री गोड़ के, यज्ञेश गोड़ के। भवानी नगर पैठन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊसाई धोंगड़े और गंगा सागर धोंगड़े जी, हर्षवर्धन, अशोक धोंगड़े, राशि कार्तिक परी और धोंगड़े परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ रहे हैं और भी जो मनोरंजन करना चाहते हैं इसी गीत के साथ में। साथियों, नाम बताना चाहूंगी, नागपुर से हैं विठल जाधव, अनुसुया जाधव, पवन राजे जाधव। संभाजी नगर से मंगेश इंग्ले, संध्या इंग्ले, स्वराज विराज जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों पत्थर के फूल। गीत के बोल हैं कभी तो चलिया लगता है कभी तो दीवाना लगता है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी गुरुवंश श्रीवास बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास छत्तीसगढ़ से हैं, मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू मानस राज। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, सनावत कॉलोनी से हैं, यूनुस खत्री, सफ़ी खत्री, इद्रीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो सुनना चाह रहे हैं इस गीत को, छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली और बेबी निशा और समीप मित्रगण जुड़ना चाह रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कभी तू छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है गणेशपुर कंसुटवारा से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों सनम तेरी कसम। फिल्म का नाम भी यही है और गीत के बोल भी यही है। बताना चाहूंगी फरमाइश करता जुड़ रहे हैं फिरासत हुसैन, अलक कमर जहां, सिफा शिमरन, मोहम्मद अल्फेज जी, नाहिरा गुड़िया जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं शमदल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे खंडिया गेट कॉलोनी रामपुर से अमरजीत शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चना गोड़ाने जी, प्राय प्रसिद्धि हीरामन शेंडे जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, अर्पणा नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ। नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों आपको मुजफ्फरपुर बिहार से आयरन राज रोहिताज, पीयूष कुमार जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं चन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, विदही जोशी, हंसिका जोशी और अंकिता जोशी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सनम तेरी कसम। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों यही हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हम कार्यक्रम से विदा लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी फरमाइश की गीत रहे वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है संवेदना के बिना अधूरी है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब हम डॉक्टर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करता है।
0: जी जी।
1: लेकिन क्या केवल दवाइयां देना ही डॉक्टर का काम है? क्या केवल मेडिकल की डिग्री हासिल कर लेना ही डॉक्टर बन जाना है? शायद नहीं। एक सच्चा डॉक्टर वो है कशिश जो मरीज के दर्द को महसूस करे, उसकी चिंता को समझे और उसे ये भरोसा दिलाए कि वो अकेला नहीं है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि हमारे दोस्तों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है, तो कार्यक्रम के उसी दस्तूर को निभाते हुए हम दोस्तों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत पहले सुनवा देते हैं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, संवेदना के बिना अधूरी है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले भी हमारे साथियों को ये बताया था कि जब भी हम डॉक्टर

0: शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो बीमारियों का इलाज करता है,
1: बिल्कुल,
0: लोगों को स्वस्थ बनाता है और जीवन बचाने का कार्य करता है। साथियों, डॉक्टर बनने के लिए वर्षों की कठिन पढ़ाई, प्रशिक्षण, अनुशासन और अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन प्रश्न ये है, क्या डिग्री प्राप्त कर लेना, आधुनिक चिकित्सा ज्ञान हासिल कर लेना या फिर तकनीक रूप से दक्ष हो जाना ही अच्छे डॉक्टर की पहचान है? तो इसका उत्तर है जागृति जी, नहीं। क्योंकि एक डॉक्टर के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है संवेदना।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक मुस्कान, एक भरोसेमंद शब्द और एक संवेदनशील व्यवहार मरीज के लिए किसी दवा से कम नहीं होता है। युवा साथियों, डॉक्टर बनना केवल एक करियर नहीं है बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें किसी इंसान का जीवन हमारे हाथों में होता है। कशिश,
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो वो अपना सबसे कीमती धन, अपना जीवन डॉक्टर के भरोसे छोड़ देता है।
0: जी जी।
1: ऐसे में डॉक्टर का कर्तव्य है केवल इलाज करना नहीं बल्कि मरीज का मनोबल बनाए रखना। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत से युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है श्रोताओं, लेकिन डॉक्टर बनने की तैयारी करते समय हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि चिकित्सा सेवा का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि संवेदना का मतलब केवल किसी के दुख पर दुखी हो जाना नहीं होता, बल्कि इसका वास्तविक मतलब है किसी व्यक्ति की परिस्थिति को समझना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही उसकी सहायता करने की इच्छा रखना। साथ ही जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तब वह केवल शारीरिक रूप से बीमारी लेकर नहीं जाता, उसके साथ कई चिंताएं भी होती है, जैसे कि बीमारी का डर, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक समस्याएं और मानसिक तनाव। ऐसे समय में डॉक्टर की मधुर वाणी और धैर्य उस मरीज की आधी बीमारी को तो खत्म ही कर देते हैं।
1: जी हाँ।
0: हम कह सकते हैं कि डॉक्टरी को हमेशा से एक सेवा कार्य माना गया है और समाज में डॉक्टर को तो भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। क्योंकि जागृति जी, डॉक्टर ही वह व्यक्ति होता है जो जीवन बचाने का प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, और हम कह सकते हैं कि आज का युवा कल का डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और नेता बनेगा। यदि युवावस्था में ही संवेदनशीलता विकसित नहीं हुई तो भविष्य में समाज केवल कुशल पेशेवर से भर जाएगा। लेकिन श्रोताओं, अच्छे इंसानों की कमी हो जाएगी। संवेदनशीलता हमें दूसरों की समस्याओं को समझना सिखाती है, ये हमें सहयोग करना सिखाती है, करुणा और सेवा की भावना देती है। कशिश, जब कोई युवा डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो उसे किताबों के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी सीखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि श्रोताओं, मेडिकल की किताबें शरीर का विज्ञान सिखाती है लेकिन संवेदना इंसानियत का विज्ञान सिखाती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में विद्यार्थियों को शरीर की संरचना और रोगों के कारण का ज्ञान दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी सीखना चाहिए कि मरीज से बात कैसे की जाती है, उनकी भावनाओं को समझा कैसे जाता है और कठिन परिस्थितियों में कैसे सहयोग दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, चिकित्सा शिक्षा में मानवीय मूल्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो समाज को अधिक संवेदनशील डॉक्टर मिल सकते हैं। हम कह सकते हैं जागृति जी कि बीमारी केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि मन को भी कमजोर कर देती है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार मरीज सोचने लगते हैं कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, मेरा भविष्य क्या होगा या मेरा परिवार मेरे बिना कैसे चलेगा।
1: जी हाँ।
0: ऐसी स्थिति में डॉक्टर के सकारात्मक शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो मरीज को नई शिक्षा और शक्ति दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि एक मुस्कान, एक आश्वासन और कुछ प्रेरणादायक शब्द दोस्तों कई बार दवाइयों से भी अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम बता रहे हैं हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कि संवेदना के बिना अधूरी है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी संवेदना के बिना अधूरी है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया। इस गीत से पहले हमने जाना था कि संवेदना आखिर क्या है और क्यों जरूरी है। साथ ही हमने डॉक्टर केवल पेशा नहीं एक जिम्मेदारी है इसको लेकर भी बात की थी। तकनीक बढ़ी है लेकिन संवेदना की जरूरत आज भी बढ़ी है, ये भी हमने बात बताई थी हमारे श्रोता साथियों को। और युवाओं को क्यों सीखनी चाहिए संवेदनशीलता, ये भी हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को बताया था। यही श्रोता साथियों अगर आपको बताएं मरीज और डॉक्टर के रिश्तों के बारे में, तो श्रोताओं आपसे कहना चाहेंगे कि हर सफल इलाज की नींव विश्वास पर टिकी होती है।
1: जी।
0: जब मरीज डॉक्टर पर विश्वास करता है कशिश, तो वो उपचार के प्रति सकारात्मक रहता है। और जब डॉक्टर मरीज की बात ध्यान से सुनता है, तो वो बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद की कमी हो जाए, तो विश्वास भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर को केवल अच्छा चिकित्सक ही नहीं बल्कि अच्छा श्रोता भी होना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील डॉक्टरों की आवश्यकता को लेकर हम बात करें, तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश भारत की सबसे बड़ी आबादी गांव में रहती है।
0: बिल्कुल।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आर्थिक समस्याएं कुछ रहती है या कभी कभार जागरूकता का अभाव भी रहता है। ऐसे क्षेत्रों में जागृति जी कार्य करने वाले डॉक्टर यदि संवेदनशील होंगे, तो वे केवल मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि संवेदना डॉक्टर को नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करती है। जो संवेदनशील डॉक्टर होते हैं वे मरीज के हित को सर्वोपरि रखते हैं।
0: जी हाँ।
1: ईमानदारी से उन्हें सलाह देते हैं, अनावश्यक उपचार से बचाते हैं और मरीज की गोपनीयता का भी सम्मान करते हैं।
0: जी
1: और यही गुण चिकित्सा पेशे की गरिमा बनाकर रखती है जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश। और संवेदनशील डॉक्टर केवल कॉलेजों में नहीं बनते बल्कि परिवार, समाज और संस्कारों से भी बनते हैं। जब बच्चों को बचपन से सेवा, सहयोग और दूसरों की मदद करने की शिक्षा दी जाती है, तब वे बड़े होकर संवेदनशील नागरिक बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, समाज को भी डॉक्टर का सम्मान करना होगा और युवाओं को चिकित्सा सेवा के मान्य पक्ष के बारे में जागरूक करना होगा।
1: जी हाँ।
0: युवा साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो केवल परीक्षा की तैयारी मत कीजिए, अपने भीतर दया भी लाइए, करुणा और संवेदना भी विकसित कीजिए। याद रखिए, मरीज हमारे ज्ञान को तभी स्वीकार करेगा जब उसे हमारे व्यवहार में अपनापन महसूस होगा। एक संवेदनशील डॉक्टर हजारों लोगों के जीवन में आशा का दीपक जला सकता है। वो केवल रोग नहीं मिटाता कशिश, बल्कि लोगों के मन से भय और निराशा भी दूर करता है।
1: जी हाँ।
0: आज की बातों का यही सहारे श्रोता साथियों कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया केवल किताबों, प्रयोगशालाओं, परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें ज्ञान के साथ साथ मानवता, करुणा और संवेदना का होना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: एक डॉक्टर की पहचान उसकी डिग्री से नहीं होती बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मरीज को दवा देना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे विश्वास देना।
1: जी जी।
0: तो श्रोता साथियों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपने भीतर संवेदनशीलता और मानवता को हमेशा जीवित रखें।
1: बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों, कहा जा सकता है कि डॉक्टर बनना केवल एक पेशेवर उपलब्धि नहीं है बल्कि मानवता की सेवा का संकल्प है। ऐसे में चिकित्सा ज्ञान, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब की आत्मा संवेदना है जागृति जी, और बिना संवेदना के चिकित्सा केवल उपचार बनकर ही रह जाती है, जबकि संवेदना उसे सेवा और मानवता का रूप प्रदान करती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमारे श्रोता साथियों से कहना ये बिल्कुल उचित है कि संवेदना के बिना डॉक्टर बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अधूरी है। एक सफल डॉक्टर वही है साथियों जो मरीज के शरीर के साथ साथ उसके मन को भी समझे।
0: जी हाँ।
1: उसकी पीड़ा को भी महसूस करे और उसे स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास दे। तो युवा साथियों, यदि आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो केवल किताबों से ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने हृदय में करुणा और संवेदना भी विकसित कीजिए।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए कि एक डिग्री आपको डॉक्टर बना सकती है, लेकिन आपकी संवेदनशीलता ही आपको लोगों के दिलों में स्थान दिलाएगी।
0: बिल्कुल।
1: मानवता, सेवा और संवेदना से साथियों डॉक्टर ही समाज की सच्ची धरोहर होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज की जो बातें हैं वो हमें एक बहुत गहरी सीख भी देकर जा रही है। दुनिया में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे हमें जो अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संवेदनशीलता से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। श्रोताओं, डॉक्टर का पेशा केवल शरीर का उपचार करने का नहीं बल्कि टूटते हुए रिश्तों को संभालने और निराश मन में उम्मीद जगाने का भी है।
1: बिल्कुल।
0: जब कोई मरीज अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है,

0: तब वो केवल इलाज नहीं खोज रहा होता बल्कि वो एक ऐसे इंसान की तलाश में होता है जो उसकी पीड़ा को समझ सके। इसीलिए चिकित्सा विज्ञान की असली ताकत केवल दवाओं और उपकरणों में नहीं है श्रोताओं, बल्कि उस मानवीय स्पर्श में छिपी होती है जो मरीज को ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, यदि आप जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने सपनों के साथ अपने दिल को भी बड़ा बनाइए। किताबें आपको ज्ञान देंगी, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, अनुभव हमें कुशल बनाएगा, लेकिन संवेदना हमें ऐसा व्यक्तित्व देगी जिसे समाज हमेशा सम्मान और प्रेम से याद करेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए याद रखिए, सफलता का अर्थ केवल ऊंचे पद तक पहुंचना नहीं है। सफलता तब है जब हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आए, किसी की आंखों में उम्मीद जग जाए और किसी का जीवन बेहतर बन सके। इसलिए हम सबके मन में ऐसा होना चाहिए श्रोता साथियों कि हम ऐसे भारत को बनाने का संकल्प लें जहां डॉक्टर केवल रोगों का उपचार न करें बल्कि मानवता की सेवा का सबसे सुंदर उदाहरण बने, क्योंकि भविष्य उन्हीं के हाथों से सुरक्षित होता है जिनमें ज्ञान के साथ करुणा भी होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में इतना योग्य जरूर बनिए कि लोग आपकी प्रतिभा की सराहना जरूर करें, और इतने संवेदनशील जरूर बनिए कि लोग आपकी मानवताओं को कभी ना भूलें।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है सफेद कोट की असली पहचान डिग्री नहीं होती, संवेदना से भरा हुआ दिल होता है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूंगी। विदा लेने से पहले आपको पता बताना चाहेंगे ताकि आज की जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको कैसी लगी, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को,
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को जिम्मेदार बनाना कब और कैसे शुरू करें। हम देखते हैं कशिश के हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर आत्मनिर्भर, समझदार और सफल इंसान बने।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ऐसे गुण अचानक नहीं आते, इसके बीच बचपन में ही बोए जाते हैं। जिम्मेदारी भी एक ऐसा ही गुण है जो बच्चों को धीरे धीरे सिखाया और विकसित किया जाता है। अक्सर हम बच्चों को बहुत छोटा समझकर उनके सभी काम खुद कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसा हमेशा करना श्रोता साथियों सही होता है? क्या बच्चों को शुरू से ही कुछ जिम्मेदारियां देना जरूरी है? तो आज इस विषय पर कशिश हमारी श्रोता साथियों से विस्तार से ढेर सारी बातें रहेंगी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को जिम्मेदार बनाना कब और कैसे शुरू कर सकते हैं माता पिता।
1: बिल्कुल,
0: अगर यही बात करें अंजलि जी की बच्चों को जिम्मेदार बनाना क्यों जरूरी है, तो साथियों जिम्मेदारी केवल कोई काम पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण कौशल होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि जब बच्चे जिम्मेदारी लेना सीखते हैं तो वे आत्मनिर्भर बनते हैं। वे समझने लगते हैं कि हर काम के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। जिम्मेदारी अंजलि जी बच्चों को चुनौतियों का सामना करना सिखाती है और उनमें समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता भी विकसित करती है।
1: जी जी बिल्कुल कशिश, इसके साथ ही जिम्मेदारी बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब वे अपने काम स्वयं करते हैं तो उन्हें सफलता पूर्वक पूरा करते हैं, तो उनके भीतर विश्वास पैदा होता है और वे जीवन की बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। छोटा साथियों, यही गुण आगे चलकर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में ले जाता है।
0: बिल्कुल,
1: बात आती है कि जिम्मेदारी सिखाने की सही उम्र आखिरकार क्या होती है, तो कई लोगों को लगता है कशिश की जिम्मेदारी केवल बड़े होने पर सिखाई जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत बचपन से की जाती है। यह जरूरी नहीं है कशिश के बच्चों को हम बड़ी जिम्मेदारी दें। जिम्मेदारी हमेशा उम्र और समझ के अनुसार होनी चाहिए। छोटे बच्चों को छोटी जिम्मेदारियां देकर शुरुआत की जा सकती है, इससे वे धीरे धीरे सीखते हैं कि अपने काम का ध्यान कैसे रखना है। हमें यह समझना होगा कि जिम्मेदारी का मतलब बच्चों पर बोझ डालना नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करना है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों, आप छोटी छोटी जिम्मेदारियों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि जिम्मेदारी सिखाने का सबसे आसान तरीका है अंजलि जी कि बच्चों को पहले छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाएं। दोस्तों, बच्चे अपने खिलौने को सही जगह पर रख सकते हैं, अपनी किताबें व्यवस्थित कर सकते हैं, स्कूल बैग तैयार कर सकते हैं या फिर पौधों को पानी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, ये जो छोटे छोटे काम है वो भले ही साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं के माध्यम से बच्चों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।
1: जी जी,
0: जब बच्चे महसूस करते हैं साथियों की परिवार उन्हें कुछ कामों के योग्य समझते हैं, तो इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल कशिश, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों का काम केवल पढ़ाई करना है, लेकिन घर के छोटे छोटे कामों में उनकी भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। जब बच्चे परिवार के कामों में सहयोग करते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: इससे उनमें सहयोग, सहभागिता और टीम भावना विकसित होती है। वे यह भी सीखते हैं कि हर काम का सम्मान करना चाहिए और घर की जिम्मेदारियां केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। ऐसी भागीदारी बच्चों को जीवन के प्रति अधिक जिम्मेदार भी बनाती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जिम्मेदारी का संबंध निर्णय लेने की क्षमता से भी होता है। यदि बच्चों को हर समय केवल निर्देश दिए जाए तो वे स्वयं सोचने की आदत विकसित नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें छोटे छोटे पसंद चुनने के अवसर देने चाहिए, जैसे कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सी गतिविधि में भाग लेना है या समय का उपयोग कैसे करना है। श्रोता साथियों, यकीन मानिए जब बच्चे निर्णय लेते हैं तो उनके परिणाम भी बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। वे अनुभव सीखते हैं और धीरे धीरे अधिक जिम्मेदार भी बन जाते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से ही, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चों को जिम्मेदारी सिखाना जरूरी होता है, उसकी सही उम्र क्या है, और साथ ही छोटी छोटी जिम्मेदारियों से शुरुआत हम कैसे करें।
1: बिल्कुल,
0: घर के कामों में बच्चों की भागीदारी कैसे होनी चाहिए, बच्चों को निर्णय लेने के अवसर हमें कैसे देने हैं। यही बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि जिम्मेदारी सिखाने में माता पिता की क्या भूमिका है। तो श्रोता साथियों, बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। यदि माता पिता स्वयं जिम्मेदार व्यवहार करेंगे, समय का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। माता पिता को केवल आदेश देने के बजाय बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चे किसी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हैं कशिश, तो उनकी सराहना करनी चाहिए, और यदि वे गलती करें तो उन्हें डांटने या अपमानित करने के बजाय समझाना चाहिए।
1: जी जी,
0: मार्गदर्शन और धैर्य बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने में सबसे अधिक मदद करता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि कई बार अंजलि जी माता पिता बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण उनके सारे काम स्वयं करने लगते हैं, जिससे वे ये सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी,
1: लेकिन श्रोता साथियों, जब बच्चों को हर काम तैयार मिलता है तो वे आत्मनिर्भर बनना नहीं सीख पाते। ऐसे बच्चे आगे चलकर छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में दोस्तों ज्यादा संरक्षण बच्चों के आत्मविश्वास और जिम्मेदारी दोनों को प्रभावित कर सकता है।
0: जी हाँ बिल्कुल कशिश, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि जिम्मेदारी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चे समय पर अपना काम पूरा करते हैं, अपनी चीजों की देखभाल करते हैं और अपने वादों को निभाते हैं, तो उनमें अनुशासन विकसित होता है। अनुशासन बच्चों को जीवन में नियमितता और संतुलन सिखाता है।
1: जी हाँ,
0: यही आदतें आगे चलकर उनकी सफलता की मजबूत नींव बनती है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि जिम्मेदार बच्चे अपने काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं, वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखने का प्रयास करते हैं, वे दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने व्यवहार के प्रति सजग भी रहते हैं।
1: जी
0: ऐसे
1: हाँ,
0: बच्चे भरोसेमंद होते हैं और अपने परिवार, विद्यालय और समाज में सकारात्मक भूमिका निभा पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज के हमारे बच्चे ही कल का समाज है। यदि श्रोता साथियों बच्चों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी तो वे बड़े होकर अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम जैसा कि जानते हैं अंजलि जी कि जिम्मेदार बच्चे अच्छे नेता, जागरूक नागरिक और संवेदनशील इंसान बनते हैं। साथियों, वे केवल अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं।
0: जी जी,
1: इस प्रकार जिम्मेदार बच्चों का निर्माण एक मजबूत और बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से कि जिम्मेदारी कोई ऐसा पाठ नहीं है जिसे एक दिन में सिखाया जा सके।
1: बिल्कुल,
0: यह एक सतत प्रक्रिया है जो बचपन से शुरू होकर जीवन भर चलती है। बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए सबसे पहले हमें उन पर भरोसा करना होगा।
1: जी हाँ,
0: हमें उन्हें अवसर देने होंगे ताकि वे स्वयं अनुभव प्राप्त कर सके और अपनी क्षमताओं को पहचान सके।
1: बिल्कुल,
0: हमें यह भी स्वीकार करना होगा श्रोता साथियों कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि बच्चा गलती करता है तो उसे असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझाना चाहिए। बच्चों को हर समय बचाने की बजाय उन्हें समस्याओं का सामना करना और समाधान खोजना सिखाना अधिक आवश्यक है। याद रखिए कि जिम्मेदारी सिखाने का सबसे बड़ा मंत्र है भरोसा दीजिए, अवसर दीजिए, धैर्य रखिए और गलतियों से सीखने दीजिए और हर छोटी प्रगति की सराहना कीजिए। जब हम बच्चों को जिम्मेदारी निभाने का अवसर देते हैं कशिश, तो हम न केवल उनका वर्तमान संवारते हैं बल्कि उनके भविष्य को भी मजबूत बनाते हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जिम्मेदार बच्चे ही आगे चलकर आत्मनिर्भर, संवेदनशील और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने वाले नागरिक बन पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, दोस्तों कह सकते हैं कि बच्चों को जिम्मेदार बनाना केवल उन्हें कुछ काम सौंप देने तक सीमित नहीं होता है।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये उन्हें जीवन के लिए तैयार करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। साथियों, हम कह सकते हैं अंजलि जी कि आज जो बच्चा अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समझना सीखता है, वही आगे चलकर बड़े निर्णय लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम बनता है।
0: जी जी,
1: इसलिए साथियों जिम्मेदारी को केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन कौशल के रूप में हमें देखना चाहिए। साथ ही हमें ये भी समझना जरूरी है कि जिम्मेदारी का विकास डर, दबाव या सजा से नहीं होता। यदि बच्चे किसी काम को केवल डांट के डर से करते हैं साथियों, तो वे उस काम का महत्व कभी नहीं समझ पाएंगे।
0: जी जी,
1: ऐसे में वास्तविक जिम्मेदारी तब विकसित होती है जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके कार्यों का असर उनके अपने जीवन और दूसरों पर भी पड़ता है। अंजलि जी, जब वे ये समझने लगते हैं कि उनके प्रयास परिवार, विद्यालय और समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तब इस जिम्मेदारी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो अंत में श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि जिम्मेदार बच्चे केवल अपने परिवार का गौरव नहीं बनते, बल्कि वे समाज की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। वे भविष्य के ऐसे नागरिक बनते हैं जो अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं, और जो एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस तरीके से आज कार्यक्रम में कशिश हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमें बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहिए, तो उसकी शुरुआत हम कब करें और कैसे करनी चाहिए। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की विरासत को लेकर। जैसा कि श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकृति मानव जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है।
0: जी।
1: पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल, जंगल और जमीन के संतुलन पर टिका हुआ है। यदि हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य देना है तो हमें आज से ही प्रकृति के संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास भी करने होंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसी सोच को मजबूत करने के लिए श्रोता साथियों, वन महोत्सव जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। वन महोत्सव केवल वृक्ष लगाने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये प्रकृति प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी। जानेंगे हम कार्यक्रम के माध्यम से कि वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है और इसके क्या फायदे हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि विषय से आपको अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है वन महोत्सव आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की विरासत है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, वन महोत्सव हमें ये याद दिलाता है कि पेड़ केवल लकड़ी या ईंधन का स्रोत नहीं है, बल्कि वे जीवन के रक्षक हैं। एक वृक्ष अपने पूरे जीवन काल में हजारों लोगों को स्वच्छ हवा देता है,
2: बिल्कुल,
1: जल संरक्षण में मदद करता है और पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखता है। श्रोता साथियों, जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति की अनमोल संपदा सौंपी है, उसी प्रकार हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की समृद्ध विरासत छोड़ के जाएं, क्योंकि हरियाली का हमें सम्मान करना होगा, तभी सुरक्षित हमारा भविष्य होगा।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़, ये सारी समस्या लगातार बढ़ रही है
2: जी जी।
0: और इन समस्याओं का एक बड़ा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। जब जंगल कम होते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और धरती का तापमान बढ़ने लगता है
2: जी हाँ।
0: ऐसे समय में वन महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अभियान बन जाता है। श्रोताओं, पेड़ धरती के प्राकृतिक एयर कंडीशनर है, वे वातावरण को ठंडा रखते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं और जीवन को संतुलित भी बनाते हैं। अंजलि
2: जी जी,
0: यदि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे तो हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसीलिए श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि वन महोत्सव का संदेश केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि वन केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते हैं बल्कि जैव विविधता को भी सुरक्षित रखते हैं।
2: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जंगल लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों और वनस्पतियों का घर है। यदि जंगल समाप्त हो जाएंगे तो अनेक प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा।
2: जी हाँ,
1: वन महोत्सव हमें यह समझाता है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस श्रृंखला को बचाने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को हम कह सकते हैं कि आज विकास के नाम पर तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है। सड़कें, भवन और औद्योगिक परियोजनाएं जरूरी है, लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि हम केवल विकास पर ध्यान देंगे और प्रकृति की अनदेखी करेंगे तो भविष्य में हमें गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। वन महोत्सव हमें संतुलित विकास की राह दिखाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की विरासत छोड़ना केवल सरकार का काम नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति, श्रोता साथियों, अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो पूरे देश में हरियाली का विस्तार हो सकता है। पौधा लगाना आसान है लेकिन उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखना असली सेवा है। गाँव की भूमिका इस अभियान में और विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारत की श्रोता साथियों बड़ी आबादी गाँव में रहती है और गाँवों का जीवन जागृति जी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यदि ग्रामीण समुदाय संरक्षण का संकल्प ले लें तो हरियाली को बचाने का बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता
2: बिल्कुल।
1: है।
2: बिल्कुल,
1: सामुदायिक वन, चारागाह और जल स्रोत का संरक्षण गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि गांव का अगर हरियाली आएगी तो खुशहाली का संदेश हम अपने आप बता पाएंगे। श्रोताओं, युवाओं और बच्चों की भागीदारी वन महोत्सव को और अधिक प्रभावी बना सकती है। आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं अंजलि, और यदि बचपन से ही हम उन्हें प्रकृति के महत्व की शिक्षा देंगे तो वे बड़े होकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनेंगे।
2: बिल्कुल,
0: स्कूल और कॉलेजों में वृक्षारोपण अभियान केवल औपचारिकता न होकर जीवन का संस्कार बनना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि युवाओं में ऊर्जा, उत्साह और नई सोच होती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि युवा हर वर्ष कुछ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लें तो पर्यावरण संरक्षण का अभियान नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके भी युवाओं को हरियाली के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है वन महोत्सव को लेकर, हम जान पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की विरासत क्या होगी। तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से युवाओं की भागीदारी होती है वन महोत्सव को प्रभावी बनाने में। श्रोता साथियों, वन महोत्सव का संबंध केवल पर्यावरण से नहीं है बल्कि आर्थिक समृद्धि से भी है। फलदार, औषधीय और उपयोगी वृक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। वृक्ष किसानों की आय बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी प्रकार हरियाली केवल प्रकृति की रक्षा नहीं करती है बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम अक्सर पूंजी का अर्थ धन से लगाते हैं, लेकिन यदि पृथ्वी पर स्वच्छ हवा ही न बचे, पीने योग्य पानी न रहे, तापमान असहनीय हो जाए तो धन का क्या महत्व रह जाएगा। हरियाली हमारी सबसे प्राकृतिक पूंजी है श्रोताओं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, मिट्टी को बचाते हैं, जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं और वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। एक विकसित समाज वो नहीं होता जिसके पास बड़ी बड़ी इमारतें होती है, बल्कि वो होता है जहाँ मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब हम पेड़ को बचाते हैं तो वास्तव में हम भविष्य को बचा रहे होते हैं।
0: जी हाँ, क्योंकि जागृति जी, जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो वास्तव में हम भविष्य में निवेश करते हैं। वह पौधा आने वाले वर्षों में न केवल छाया देगा बल्कि स्वच्छ हवा, फल, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का आधार भी बनेगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, हर लगाया गया पौधा भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज लगाएंगे जो पौधे हम, कल उनका लाभ उठा पाएंगे हम। वन महोत्सव हमें यह सिखाता है कि प्रकृति से प्रेम करना केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियां हमें यह नहीं पूछेंगी जागृति जी कि हमने कितनी इमारतें बनाई थी, बल्कि हमसे ये पूछेंगी कि हमने उनके लिए कैसी धरती छोड़ी है। यदि आज हम हरियाली को बचाने और बढ़ाने का संकल्प ले लेते हैं तो हम अपने बच्चों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित जल, संतुलित जलवायु और सुंदर वातावरण की अमूल्य विरासत दे सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम अपने पूर्वजों से जो धरती पाकर आए हैं वो केवल हमारी नहीं है, उस पर आने वाली पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में बच्चे किताबों में जंगलों की तस्वीर देखकर पूछेंगे कि क्या सच में इतने बड़े जंगल हुआ करते थे। क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं श्रोताओं? यदि नहीं तो हमें आज से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हर पीढ़ी का कर्तव्य अंजलि की वो अगली पीढ़ी को अपने से बेहतर परिस्थितियां सौंपे। यही सच्ची विरासत है और यही

0: प्रकृति के प्रति हमारा धर्म है। श्रोताओं, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वे प्रकृति की जीवनदायिनी है। वन वर्षा को संतुलित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्थल को बनाए रखते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। कहीं हम देखते हैं कि भीषण गर्मी है, कहीं बाढ़ है और कहीं सूखे की मार है।
1: जी जी।
0: इन चुनौतियों का सबसे प्रभावी और प्राकृतिक समाधान अधिक से अधिक हरियाली है। जितने अधिक जंगल होंगे उतनी ही अधिक पृथ्वी की जीवन शक्ति मजबूत होगी। वनों के बिना पर्यावरण संतुलन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि वन महोत्सव केवल पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और भविष्य की सुरक्षा का संकल्प है। आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, घटते वन क्षेत्र और अनियमित वर्षा जैसी समस्या पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़ी है, तब वन महोत्सव का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें याद दिलाता है कि यदि धरती को हरा भरा और जीवन को सुरक्षित रखना है तो पेड़ों का संरक्षण और नए पौधों का रोपण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वन महोत्सव का सबसे बड़ा महत्व यही है, यह समाज के हर वर्ग, बच्चों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को पर्यावरण संरक्षण के एक साझा अभियान से जोड़ता है। जब पूरा समुदाय मिलकर पौधे लगाता है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाता है, तब पर्यावरण संरक्षण एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन बन जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हरियाली केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करती बल्कि आर्थिक समृद्धि का रास्ता भी खोलती है।
1: बिल्कुल,
0: फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे और वन आधारित उत्पाद लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। किसानों के लिए कृषि वानिकी की नई संभावना लेकर आई है। खेतों के किनारे लगाए गए पेड़ अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकते हैं। हरियाली मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती है और जल संरक्षण करती है और खेतों को मजबूत बनाती है। इस प्रकार अंजलि, हम कह सकते हैं कि पेड़ केवल पर्यावरण के रक्षक नहीं बल्कि विकास और स्वावलंबन के स्वाथी भी है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि कई लोग सोचते हैं कि अकेले उनके प्रयास से क्या होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि एक व्यक्ति एक पौधा लगाएगा, एक परिवार पांच पौधे लगाए और एक गांव हजार पौधे लगाए, तो कल्पना कीजिए श्रोताओं कि कितना बड़ा परिवर्तन संभव है। पर्यावरण संरक्षण किसी एक संस्था, सरकार या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी का साझा दायित्व है।
1: बिल्कुल,
0: जब हर नागरिक अपनी भूमिका निभाएगा तब हरियाली का सपना साकार होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पाए कि किस तरीके से वन महोत्सव जो है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत हो सकती है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम घूमर हमरवा वारी अमर हित्ते बोन ने आपनी बोन मनीषा ने आपनी बोन अंजलि नु
1: राम राम।
0: हुवे बोनो आप सब हमली रिया हो आपडो सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत करे हां अमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
2: हुवे भाईन बोनो लेने हाजिर थी गयो हां कार्यक्रम घूमर ने एक नया विषय ने हाते। तो भाईन बोनो आज हमारी कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नु विषय है कि 40 वर्ष ने बाद अपनी बोनो नी सेहत नु ध्यान अपना ने हरते राखवू है।
0: हुवे
2: अपने देखो हो कि जीवन ना हर पड़ाव में नवी जिम्मेदारी है ने नवा अनुभव अपने कने आवे है। 40 वर्ष नी उम्र ने बाद अपनी बोनो नी शारीरिक कई चीजें जे है ई बदली साई है। एना ने कोई बीमारी ने होवे बल्कि आ सब चीजें जे है एक सामान्य चरण माते रहे हैं। अगर एनी टाइम ई सही खान पान नियमित जांच ने स्वस्थ जीवन शैली ने अपनावे है तो आपणे देखो कि एना नु जे स्वास्थ्य है ई खराब थई शके।
0: होवे
2: आज आपणे जाणंगा कि 40 वर्ष ने बाद अपनी बोनो नी कई कई विशेष बातों नु ध्यान राखवू सुए।
0: होवे अंजलि बोन तणा विषय माते आपणे बोने खते घणा अक्कानी वाती रींगा अबर हामळा गीत ने मोरे कर आपणी वाती।
2: होवे तो भाईन बोनु आप हामळत रहेसु आपणो रेडियो आपणी वाते वागड रेडियो 90.8 FM माते।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने है ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता ही है, और वो है निराशा। साथियों, कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे, हमारे सपने दूर लग रहे हैं और लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, निराशा केवल क्षणिक भावना है और इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारे भीतर ही है। जब अंधेरा गहरा होता है दोस्तों, तो खुद पर भरोसा रखो, सूरज फिर उगेगा। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे साथियों कि निराशा से बाहर हम कैसे आए। बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, और वो है निराशा। और निराशा से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि हम क्यों निराश होते हैं? बताना चाहूंगी दोस्तों कि कभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं, या फिर कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं तो कभी हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, कभी हमारे पास सही मार्गदर्शन भी नहीं होता। लेकिन साथियों, निराशा जीवन का अंत नहीं है, यह केवल हमें सोचने और सुधारने का संकेत देती है। असफलता केवल मार्गदर्शक होती है साथियों, लेकिन निराशा स्थायी नहीं होती। साथियों, ध्यान दीजिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर भी तो आता है ना। कभी कभी ना साथियों, हम बहुत छोटे परिणामों से निराश हो जाते हैं, लेकिन छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। साथियों, एक बात बताइए कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहे? यह सोच कर एक पल रुकिए और सोचिए कि कैसे आपने इस स्थिति से सीखा। जी हाँ दोस्तों, हर निराशा में छिपा होता है एक सीख और एक नया अवसर, जिसे बस हमें समझने की जरूरत होती है। यही मैं एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि निराशा केवल एक चुनौती है, अवसर नहीं। जी हाँ श्रोता साथियों, एक युवक था रोहित। वह अपने करियर में बहुत उत्साही था, लेकिन लगातार असफल होता रहा। हर नौकरी में रिजेक्ट, हर प्रयास में विफलता। धीरे धीरे रोहित निराश हो गया। वह सोचने लगा दोस्तों कि शायद मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास एक मित्र था। उसने रोहित से कहा कि असफलताएं तुम्हारा अंत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें सही राह दिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। फिर दोस्तों, रोहित ने अपनी गलती और स्थिति को समझा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी पसंद की नौकरी में सफल हुआ। तो साथियों, ये हमें कहानी सिखाती है कि जो गिरकर उठना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमें भी हमारे जीवन में ऐसा ही करना चाहिए कि हमें हमारी जो असफलताएं हैं, हमारी जो स्थिति है, उनसे बहुत सारी सीख मिल सकती है। और जब हम हमारे जीवन की कठिनाइयों को समझ जाते हैं, हमारे असफलता के पीछे के कारण को समझ जाते हैं ना साथियों, तो हम उन सारी चीजों में सुधार कर जीवन में नए मार्ग को अपना पाते हैं। यही श्रोता साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है? अगर साथियों आप मेरी इस बात का जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपसे सवाल किया ही था कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है। इस बात का जवाब श्रोता साथियों जब आप हमें देंगे ना, तो हमारे बहुत से दूसरे जो श्रोता साथी हैं, उन्हें भी अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करना और निराशा से किस तरीके से दूर रहते हैं ये सारी सीख मिल पाएगी। अब यही मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगी जिससे हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। साथियों, निराशा से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है खुद पर भरोसा रखें, यानी कि आपकी ताकत आपकी सोच में है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आप हर निराशा से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ जीवन में छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे कदम साथियों मनोबल बढ़ाते हैं। अच्छे मित्र और अच्छे लोगों के साथ जुड़े ताकि आपका जो जीवन है वो भी अच्छा बना रहे। और श्रोता साथियों, जीवन की सबसे बड़ी जो बात है वो हर किसी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वो है धैर्य। धैर्य जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति जीवन की हर समस्याओं हर कठिनाइयों से दूर रह सकता है। साथियों, कहना चाहूंगी हर निराशा में छिपा होता है एक सबक और एक नया अवसर। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह आती है साथियों कि अंधेरा जितना गहरा होता है ना, रोशनी उतनी ही तेज दिखाई देती है। हर कठिनाई हमारी ताकत बन सकती है अगर हम चाहें तो। कभी कभी दोस्तों हमें लगता है ना कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल भी हमसे बहुत दूर है और ताकत कम है। तब हमें ये याद रखना है कि हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन उसने कदम रोकने की बजाय और मेहनत की। साथियों, जरा सोचिए कि यदि महान वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर निराशा में ही रुक जाते तो आज हम उनके योगदान से वंचित रह जाते। इसलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो, कभी अपने प्रयासों को कम मत आंको और कभी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जीतता वही है जो गिरकर भी उठता है। हमें ये भी सोचना चाहिए दोस्तों कि सफलता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सच यह है कि बड़ी मंजिल भी छोटे कदमों से ही पूरी होती है। हर दिन जब हम छोटा प्रयास करेंगे, हर छोटे कदम निरंतर रखते रहेंगे और उन चीजों से नई सीख लेते रहेंगे, तो हम सफल अवश्य होंगे। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि अपने जीवन में एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं जो आपकी निराशा को दूर करे और आपके सपनों को करीब ले जाए। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। खुद पर भरोसा ही आपको निराशा से बाहर ले जाएगा। खुद पर भरोसा ही आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देगा। जब आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, जब आप सोचेंगे कि कठिनाइयाँ केवल असर है, जब आप सोचेंगे कि हर गिरावट से मैं मजबूत बनूंगा, तो निराशा आपके पास टिकी ही नहीं पाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि निराशा से हम दूर कैसे रह सकते हैं। बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहूंगी।

साथियों, आज हमने जाना कि निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे बाहर निकलना हमारे ही हाथ में है। जब हिम्मत और प्रयास साथ हो तो निराशा कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर आता है। इसलिए निराशा में डूबने के बजाय एक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इसी संदेश के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhra.org, radio@vaagdhra.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय हमारे जीवन से जुड़े एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई ने बोलो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।